दर्शकों तुम्हें सारे ही सुने प्यारा दिया गीत दर्शकों फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुम्हें सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना देने से सुना देने माटी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। ता कार्यक्रम च फिर यहाँ अगे बढ़ने जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत दी तरफ ले चल देने।

सर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ताशो तो तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है सही संपन्न होंदा है तो तुहां सारे अपनी रेडियो दोस्त शशि दे अनुमति कन्ने सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो,
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने है क्या?

291.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

0: साल का।
1: दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। रजोल धनोटू सड़क 6 से 16 अक्टूबर तक रहेगी बंद। पाइप कलवर्ट एवं सीसी पेमेंट निर्माण कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही पर रहेगी रोक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र खनियारा में एक वर्षीय LLM पाठ्यक्रम शुरू। पाठ्यक्रम में 30 गैर सब्सिडाइज सीटें उपलब्ध, मेरिट के आधार प्रवेश। बेसहारा मानसिक रोगियों की मदद करेगा विधिक सेवा प्राधिकरण। 7 से 9 अक्टूबर से चलेगा विशेष अभियान। ज्वालामुखी रोहाड़ू सड़क का एक हिस्सा 6 से 16 अक्टूबर तक रहेगा बंद। सड़क कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही वैकल्पिक मार्ग से होगी। अब समाचार विस्तार से।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा मानसिक बीमारी के कारण भटक रहे बेसहारा लोगों की सहायता के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर्मेहुल शर्मा ने दी। उनका कहना है कि अभियान का उद्देश्य समाज के संवेदनशील एवं वंचित वर्ग के लोगों को समयबद्ध मानवीय एवं उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनके अधिकारों, गरिमा और कल्याण की रक्षा सुनिश्चित करना है। विशेष अभियान के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के समन्वय से ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। अभियान में पैरालीगल वॉलंटियर भी सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि चिन्हित व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करवाने के साथ आवश्यक उपचार तथा जरूरत के अनुसार उपयुक्त मनोचिकित्सीय संस्थान में भर्ती करवाने की व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय खनियारा के निदेशक कुलदीप कुमार जी ने ये जानकारी दी कि एचपीयू क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में 30 गैर सब्सिडाइज सीटें उपलब्ध हैं, जिन पर प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 21 अक्टूबर तक एचपीयू क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का शुल्क सामान्य वर्ग के लिए ₹1500 और SC/ST PWD वर्ग के लिए ₹900 निर्धारित किया गया है। शुल्क निदेशक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के नाम से डिमांड ड्राफ्ट या IPO के माध्यम से जमा करवाना होगा। जिला दंड अधिकारी कांगड़ा हेमराज वैरवा ने सड़क निर्माण कार्य के चलते रजोल से धनोटू तक सड़क के एक हिस्से को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि रजोल से धनोटू सड़क का एक हिस्सा 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक बंद रहेगा। इस दौरान पाइप कलवर्ट तथा सीसी पेमेंट का निर्माण कार्य किया जाएगा। रजोल गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 154 में से पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए रजोल के लिए अलग से यातायात डायवर्जन की आवश्यकता नहीं होगी। जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 115 के तहत जारी किया है। हालांकि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा अन्य आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। जिला दंड

चंबापत्तन वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। वाहन चालक इस अवधि में उक्त वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान एम्बुलेंस तथा अन्य आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में फरवरी 2027 से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की शुरुआत हो सकती है। सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के धबोटा में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। यह परियोजना राज्य के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। परियोजना के लिए लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करवाई गई है। वहीं ऊना में करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन अमोनिया परियोजना का प्रस्ताव है। इसके लिए जमीन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं पर भी काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 6 शहरों में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग की ओर से इस योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत सड़कों को बार बार खोदने के बजाय बिजली, पानी, सीवरेज और दूसरी यूटिलिटी सेवाओं की लाइनों को जमीन के नीचे बनाए जाने वाले व्यवस्थित डक्ट में डाला जाएगा। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग इस दिशा में आगामी कदम उठाएगा। प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 6 शहरों को इस योजना में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने सभी राजकीय तथा निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा मुख्य अध्यापकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से पात्र विद्यार्थियों की सूची स्कूलों को भेजी गई है। स्कूलों को सूची में शामिल विद्यार्थियों को विवरण का सत्यापन करना होगा। 31 अक्टूबर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। भारत में 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट बनाने की प्रस्तावित योजना के लिए घरेलू कंपनी यूप्लेक्स ने अमेरिका की स्पेक्ट्रा सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक इन नोटों के लिए प्लास्टिक सामग्री तैयार करने वाले संभावित आपूर्तिकर्ताओं को मूल्यांकन कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने 10 और 20 रुपए के नोटों के लिए प्लास्टिक फिल्म की जरूरत को लेकर निविदा जारी की है। इन नोटों के लिए लगभग 68,000 रीम विशेष प्लास्टिक फिल्म की आवश्यकता होगी। इस फिल्म पर छपाई और स्याही की पकड़ मजबूत बनाने के लिए विशेष कोटिंग की जरूरत रहेगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे। और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

दोस्तों, जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इसलिए सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जिसमें आपके जाने के बाद भी आपकी अच्छी यादें बाकी रहें। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। तो स्वागत है आप सभी का इस बेहद प्यारे से खूबसूरत से कार्यक्रम में। और इस प्यारी सी शुरुआत के साथ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की सुबह की शुरुआत भी बहुत ही प्यारी रही होगी और आप अपनी सेहत का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे हैं। जी दोस्तों, तो आइए कार्यक्रम में ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी जुड़ चुके हैं इस प्यारे से सफर में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। जी दोस्तों, आज 6 अक्टूबर 2026 का दिन है, बहुत ही प्यारा सा मंगलवार का दिन है। तो आइए बातचीत को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की एक प्यारे से गीत के साथ। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये पहला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के आवाज के साथ, और ये प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अरिजीत सिंह के आवाज में। तो आइए इन्हीं आवाजों के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे, क्योंकि मनोरंजन की आवाजें जो है वो तो बदलती रहेंगी, लेकिन जो बातचीत के लिए आप सभी आवाज सुन रहे हैं वो फिलहाल 11 बजे तक सेम रहेगी जी दोस्तों। तो आइए कार्यक्रम में रुख करते हैं मौसम की ओर। तो इस समय धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो लगभग 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इस समय का तापमान आप सभी महसूस कर सकते हैं। और आंखों देखा हाल आप सभी को बताऊं तो दोस्तों धूप तो आज खिली नहीं है और काले काले से घने घने से बादल ज़रूर छाए हुए हैं। तो ये है इस समय इन प्यारी प्यारी धौलाधार की वादियों में मौसम का नज़ारा। तो इस खूबसूरत से नज़ारे को एंजॉय करना बहुत ही खूबसूरत होता है, और साथ ही आप तो कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं जी दोस्तों। तो आइए इसी जानकारी के साथ अब रुक करते हैं मौसम विभाग की ओर, क्योंकि दोस्तों ये तो है प्रेजेंट का, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से मौसम रहने वाला है ये किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में सोमवार को मौसम साफ रहा, लेकिन 6 अक्टूबर से

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 6 से 9 अक्टूबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होने के भी आसार हैं। जी दोस्तों, ये असर 10 और 11 अक्टूबर को भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी को यही बताना चाहेंगे जो कि खेती के काम की शुरुआत कर चुके हैं और जोर शोर से काम जो है वो शुरू हो चुके हैं, तो जिन्होंने शुरू कर दिए हैं उनके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि जितना काम किया है उसे समेट लिया जाए, और जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है तो वो थोड़ा इंतज़ार कर लें। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फसलों को भी नुकसान नहीं होगा और हमारी मेहनत भी बच जाएगी। तो आइए, हमारी मेहनत मनोरंजन से बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए। तो एक और प्यारा सा गीत आप सभी तक पहुंचने जा रहा है आप सभी के अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

राहत फतेह अली खान श्रेया घोषाल की आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत। आइए इस गीत के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और बातचीत से थोड़ा हटकर रुक करते हैं कुछ खास जानकारियों की ओर। जी दोस्तों, एक बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। दोस्तों, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर देश झंडा बुलंद करने वाली हिमाचल की तीन महिला कबड्डी खिलाड़ियों को सुखू सरकार 1-1 करोड़ की इनामी राशि के साथ सरकारी नौकरी का तोहफा भी देगी। गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट का हिस्सा नहीं रेणुका ठाकुर को भी 1 करोड़ का पुरस्कार मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यह ऐलान किया। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास बात है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं और ख़ास करके देश का नाम पूरे जहान में गर्व से ऊंचा हो जाता है, तो होती है कितनी प्यारी सी बात। और कहते हैं ना, ये जज्बा ये जुनून तभी कायम रहता है जब उन्हें फुल सपोर्ट मिले, उनकी इस मेहनत को सराहा जाए और उसे जो है सम्मानित किया जाए, तो तब ये जुनून और ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ बड़ा कर दिखाने का जज्बा जो है वो सामने देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही खास जानकारी दोस्तों आप सभी तक पहुँचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। आइए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों 91 दशमलव तो मेगा हर्ट्ज पर इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ इस प्यारे से कार्यक्रम में इस समय आप सभी अपनी डेली रूटीन को भी इंजॉय कर रहे हैं और दिन की शुरुआत भी कर रहे हैं नए नए पलों की। जी दोस्तों, और हमारे आसपास की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हमारे आसपास चलते रहते हैं, तो कई बार कुछ लोग आंखें बंद करके उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग साइड से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं और आवाज़ उठाना ज़रूरी भी होता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं के कार्यक्रम में हर बार कुछ खास बातें रहती हैं आप सभी तक पहुंचाने के लिए, तो आज के कार्यक्रम में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप सभी तक पहुंचने वाली है, ये जानने के लिए आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और तब तक इंतज़ार में भी प्यार और मीठा सा गीत। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों श्रेया घोषाल अभिजीत की आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत फिल्म ओम शांति ओम से लिया था। आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब रुक करते हैं कार्यक्रम में कुछ खास बातचीत की ओर। दोस्तों जिंदगी की हम बात करें तो कहने के लिए तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जिंदगी को देखा जाए तो इतनी आसान नहीं है। ये बहुत ही अनसुलझी सी पहेली, बहुत ही अनसुलझी सी एक कहानी की तरह हर किसी के साथ जो है वो चलती रहती है। दोस्तों कभी आपने नोटिस किया कि आपकी लाइफ में दुख अक्सर उस चीज़ से नहीं आता जो हुआ है, बल्कि उस चीज़ से आता है जो आपने सोचा था कि होना चाहिए था। आपने किसी को दिल से जो है वो बहुत सम्मान दिया या बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्सपेक्ट कर ली। हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो हमें उतनी ही हंसी दें या उतना ही वापस जो है वो सम्मान दें, उतनी ही चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से, मतलब कि एक बात जो है ये एक्सपेक्टेशंस की है, उम्मीदों की है, जो हम लाइफ में शायद जो भी हमारी ज़िंदगी में इंसान आते हैं चाहे हम उन्हें जानते हैं चाहे हम नहीं जानते हैं, तो हम जब लिमिट से ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, तो उससे जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हमें खुद से भी कई बार, हम खुद से भी चाह से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं और खुद को इतना प्रेशराइज करते हैं, खुद को इतना परेशान करते हैं कि हमारी पूरी दिनचर्या, हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो बिगड़ती चली जाती है। तो इस पे हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे दोस्तों, और इसके साथ और भी कुछ ख़ास बातें जो हमारी डेली रूटीन में शायद हमारे काम आती हैं या आ सकती हैं, तो उस पे भी हम ज़रूर नज़र डालेंगे। फ़िलहाल इन्जॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.9 दशमलव ओमेगा हर्ट्ज पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, हम सभी कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं जो पैसा बचा है उसे कहाँ लगाया जाए, क्योंकि मेहनत की कमाई को सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से बढ़ाना भी जरूरी है। किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो किसी को बेटी की शादी के लिए बचत करनी है, किसी को रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित करनी है और किसी की इच्छा होती है कि हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर भविष्य के लिए एक अच्छा फंड तैयार किया जाए। लेकिन सवाल यही है दोस्तों, ऐसी जगह पैसा लगाया जाए जहां सुरक्षा भी हो और रिटर्न भी स्थिर मिले, तो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है और किस तरह से हम अपने पैसों को सेव कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि हम पैसे बहुत मेहनत के साथ कमा भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं, और अगर सही तरीके से उसे सेव नहीं किया गया या एक हमारी छोटी सी गलती की वजह से जो सालों की मेहनत है वो एक सेकेंड्स में ही आंखों से ओझल हो जाती है। किस तरह से? क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आज के समय में जो है ठगी के शिकार जो है लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जो लोग अपने आप को कई बार क्या होता है ना कि हम एक गुमान में आ जाते हैं कि नहीं हमें सब पता है, हमें हर एक चीज़ का नॉलेज है, तो हम तो इस चीज़ में कभी फंस ही नहीं सकते। अक्सर ऐसे लोगों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग भोले भाले जिन्हें नहीं आइडिया होता है कोई भी, तो उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। दिन रात मेहनत करके वो अपने पैसे बचत करते हैं, न जाने क्या क्या उम्मीदें क्या क्या सपने उन्होंने देखे होते हैं, और शातिर एकदम से वो सारे पैसे उड़ा लेते हैं, अकाउंट खाली हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा झटका लगता है, कितना बड़ा शॉक लगता है, है ना, ये हैरानी वाली बात। जी दोस्तों, तो पैसों की बचत कीजिए लेकिन सुरक्षित जगह पे उन्हें बचा कर रखिए, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और साथ ही रिटर्न मिले ये तो और बेहतर है। तो ज़रूर इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत। आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.9 ओमेगा हर्ट्ज़ से।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों, बहुत ही खास बातचीत जो है वो आज के कार्यक्रम में हम कर रहे हैं और साथ ही कुछ खास जानकारियां भी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। तो आइए दोस्तों, रुक करते हैं एक बहुत ही खास जानकारी की ओर। दोस्तों, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में रहस्यमय इन्फेक्शन ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल रूस के साइबेरिया स्थित एक एंटी प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद हड़कंप मचा है और एहतियात के तौर पर लगभग 200 लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है। हालांकि रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर प्लेग संक्रमण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्टों में न्यूमोनिक प्लेग की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। मृतक महिला की पहचान 28 वर्षीय डायरिया शिपिलोवा के रूप में हुई है, जो साइबेरिया और सुदूर पूर्व के इरकुत्स्क एंटी प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में लैब असिस्टेंट थी। जी दोस्तों, बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को डायरिया से गलती से एक टेस्ट ट्यूब टूट गई थी, जिसमें न्यूमोनिक प्लेग के बैक्टीरिया मौजूद थे और इसके बाद रूस मंगोलिया सीमा के पास अन्य सहयोगियों के साथ एक अभियान के दौरान उनकी बातचीत बिगड़ने लगी। जी दोस्तों, तो ये जो है दुनिया भर में दहशत इस समय फैल चुकी है। कहते हैं दोस्तों, एक छोटी सी गलती और बहुत बड़ा नुकसान जो है हमें झेलना पड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हम ना करें, थोड़ा ध्यानपूर्वक हम किसी भी कार्य को करें, क्योंकि कहते हैं ना, शुरुआत एक जगह से होती है लेकिन वो पहुँचते पहुँचते बहुत दूर तक चली जाती हैं चीज़ें। तो ये बहुत ही खास जानकारी। और दोस्तों, कहते हैं कि बीमारियां हैं, बीमारियां कब कहां से कहां पहुंच जाएं इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, इसलिए हमें सतर्क रहना हमेशा ज़रूरी रहता है। और अभी हम पोषण माह भी मना रहे हैं दोस्तों, तो उसमें भी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जो जानकारियाँ हम तक पहुँचाई जाती हैं वो हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

0: for more entertainment.
1: तो 91.5 ओमेगा हर्ट्ज पर इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और 9:50 होने को है और आप सभी जानते हैं कि अब समय है कुछ और खास जानकारियों को जानने का, यानी कि प्रादेशिक समाचारों का। जी दोस्तों, तो कुछ ही समय का इंतजार और उसके बाद आप सभी को लेकर चलेंगे समाचारों की ओर, उसके बाद फिर से वापस आएंगे अपनी बहुत ही खास बातचीत और मनोरंजन के साथ।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर। बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। मनाली और अटल टनल जाने का भी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों से सहयोग का किया आह्वान। प्रदेश भाजपा सेवा संकल्प अभियान के तहत कल से सभी संगठनात्मक जिलों में सेवा ज्योति यात्रा करेगी आयोजित। और सिरमौर जिले में HRTC बसों की कमी के कारण लोग परेशान। कई रूट प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर आ रही हैं। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली प्रवास का कार्यक्रम है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर

सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को नशे से बचाने और उनकी ऊर्जा को खेल व अन्य सकारात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। शिमला में नशे नु ललकार नौजवानी दी पुकार अभियान की टी शर्ट लॉन्च करने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। इस अभियान के तहत 9 अक्टूबर को नालागढ़ में मैराथन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और नशे के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत करवाने के लिए एंटी चिट्टा अभियान के तहत निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वस्थ सक्रिय और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करना है। प्रदेश सरकार शिमला जिले के रोहडू में अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में रोहडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान देश और समाज के लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि ये भवन क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक व सामुदायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान के तहत 7 अक्टूबर को प्रदेश के 17 संगठनात्मक जिलों में सेवा ज्योति यात्रा आयोजित की जाएगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य समाज में सेवा समर्पण और जनभागीदारी के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में स्वच्छता स्वास्थ्य पर्यावरण और जन जागरूकता से जुड़ी विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की जा रही है और सेवा ज्योति यात्रा इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्रों में सेवा कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि किसानों के हित में मोदी सरकार हमेशा हिमाचल के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने पिछले 12 वर्षों में प्रदेश के कृषि विकास के लिए 589.59 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा दूसरी किस्त के 64.82 करोड़ रुपए जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिला में एचआरटीसी बसों की कमी के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। नाहन डिपो से 17 बसें दूसरे जिलों में शिफ्ट किए जाने से जिले के कई रूट प्रभावित हो रहे हैं। अंतर्राज्यीय बस अड्डा नाहन के प्रभारी राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि यदि सरकार ने बसों की संख्या नहीं बढ़ाई तो आने वाले दिनों में यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है।
1: हमारे यहाँ जो बसी की प्रॉब्लम है, ये हमारी 10 बसें हमारी इलेक्ट्रिक बसें यहाँ से शिमला चली गई और 60 डीजल बसें चली गई है। इससे हमारा सारा पहाड़ी क्षेत्र रेणुकाजी दाहू कोटा साहब सिलाई सारा प्रभावित हो रहा है बसों के बगैर, और हमारे बस स्टाफ की कमी है ड्राइवर कनेक्ट होगी और आधी बसें हमारी वर्कशॉप में खड़ी है। इस वास्ते सारे प्रशासन से मैं यही दुआ करूँ, जो हमारी बसें गई है ना, इनको सबको वापस किया जाए बहुत जल्दी से जल्दी। इधर हमारा तिलोकपुर का मेला आ गया है, हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा।
0: शिमला जिले में बेघर और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के बचाव और पुनर्वास के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार अभियान का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें तत्काल देखभाल, उपचार और उचित संस्थान में दाखिला दिलाना है। इसके लिए आमजन और संबंधित हितधारकों को जागरूक किया जाएगा ताकि ऐसे मामलों की सूचना अधिकारियों तक पहुंच सके। प्राधिकरण ने लोगों से सहयोग की अपील की है। एचपी शिवा परियोजना के तहत मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र में पैदा की गई मौसमी के अच्छे दाम मिलने से किसान उत्साहित हैं। हमारे मंडी जिला संवाददाता ने बताया कि ये मौसमी अब बड़े बाजार में भी दस्तक दे रही है।
2: मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के उठाई और पलोट क्लस्टरों में तैयार हो रही मौसमी अब बड़े बाजारों में अपनी दस्तक दे रही है। एचपी शिवा परियोजना के तहत तैयार मौसमी की पहली खेप राजपुरा स्थित रिलायंस आउटलेट के लिए भेजी गई है। करीब 2 टन मौसमी की इस खेप में किसानों में उत्साह है। उन्होंने अपने उत्पाद का 40 से 45 रुपए प्रति किलो का अच्छा दाम मिल रहा है। उद्यान विभाग मंडी के अनुसार वर्ष 2020-21 में इन दोनों क्लस्टरों में 64 किसानों की भूमि पर 16,595 मौसमी के पौधे लगाए गए थे। विभाग का कहना है कि बड़े रिटेल आउटलेट तक सीधे पहुंचे किसानों को बेहतर बाजार और आमदनी के नए अवसर मिलेंगे। वही उद्यान विभाग के अधिकारी भी किसानों के साथ रिलायंस आउटलेट जाकर आधुनिक विपणन तकनीकों की जानकारी हासिल करेंगे। मौसमी की यह पहल मंडी जिला में आधुनिक बागवानी और बेहतर किसान आय की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, राष्ट्रपति आज हिमाचल आएंगी, एम्स में बांटेंगी डिग्रियां, अटल टनल का करेंगी दीदार। पंजाब केसरी की एक खबर है, हिमाचल में शून्य दाखिले वाले 100 सरकारी स्कूल डीनोटिफाई। एंटी हेलगन पर 1 साल की रोक शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी के साथ निजी के संचालन पर भी लगाया प्रतिबंध। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, जुब्बल कोटखाई में लगी एंटी हेलगन के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, प्राइड ऑफ हिल्स में प्रदेश को मिलेंगे 1300 करोड़। दैनिक जागरण की एक सुर्खी है, नौणी में कुलपति कार्यालय के बाहर हंगामा, अपनी सुरक्षा के लिए वीसी ने बुलाई पुलिस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर, बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत, मनाली और अटल टनल जाने का भी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों से सहयोग का किया आह्वान। प्रदेश भाजपा सेवा संकल्प अभियान के तहत कल से सभी संगठनात्मक जिलों में सेवा ज्योति यात्रा करेगी आयोजित। और सिरमौर जिले में एचआरटीसी बसों की कमी के कारण लोग परेशान, कई रूट प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

उस प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। जी दोस्तों, ट्यून किया है आप सभी ने 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों, आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारण का हक सिर्फ आपको है, इसलिए अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में रखें। आप पर किसी नकारात्मक परिस्थिति या व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपके अंदर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि आप उस नकारात्मक विचार को अपने सकारात्मक या सही सोच से बाहर निकाल फेंकें। हम जिस भी चीज को सच्चे दिल से पाने की इच्छा करते हैं वो सदैव हमें प्राप्त होती है। बस जरूरत है कि हम अपने लक्ष्य को निरंतर ध्यान में रखें। ये लक्ष्य आपके लिए आपकी खुशी प्राप्त करना, निश्चित समय में आप अपनी मनचाही सफलता पद या पैसे के रूप में प्राप्त करना भी हो सकता है। जी दोस्तों, तो अक्सर हमारी जिंदगी में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो जाने अनजाने, कुछ जाने होते हैं कुछ अनजाने होते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में आते हैं तो कुछ नेगेटिव बातें। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि चाहे कोई हमें कुछ गलत भी कह रहा है, कोई गलत प्रभाव डालने की कोशिश भी कर रहा है, तो हम अपने अंदर उतनी पॉजिटिविटी रख सकें, इतनी सकारात्मक हमारे अंदर हो कि हम उस नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता से निकाल फेंकें और हर कहीं सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की जो है वो खुशबू जो है वो हमें महकती हुई नजर आए। जी दोस्तों, कहते हैं ना, बहुत बड़ी से बड़ी बुराई को अच्छाई से काटा जा सकता है, तो आप भी अपने व्यवहार में हमेशा अच्छाई को निरंतर ध्यान में रखिए। फिलहाल दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पे।

बिल्कुल दोस्तों, दिल है कि मानता ही नहीं है, बस सपने पे सपने दिखाए जाता है। बस न जाने कितने ही सपने हम अपनी ज़िंदगी में पा लेते हैं, लेकिन पूरा करने की बात आती है तो कुछ सपने बीच रास्ते में ही अधूरे रह जाते हैं, कुछ पूरे ही नहीं हो पाते, लेकिन कुछ पूरे हो भी जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन सपनों के लिए कितना सीरियस हैं और कितना उन्हें वाकई में पाना भी चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। जी दोस्तों, तो जहाँ सपनों की बात आती है, अक्सर हम सपनों की बात करते भी हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ उम्मीद काफ़ी नहीं होती, उसके साथ थोड़ी सी प्लानिंग और बचत भी ज़रूरी है। और जब बात लंबे समय के निवेश की हो तो दोस्तों, PPF एक ऐसा विकल्प है जिसे बहुत से लोग अपनी सुरक्षित बचत के लिए चुनते हैं। लेकिन आखिर ये PPF है क्या? जी दोस्तों, तो PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लंबी अवधि की बचत और निवेश योजना है। इसे इस तरह बनाया गया है कि लोग छोटी छोटी रकम नियमित रूप से बचाएं और लंबे समय में एक अच्छा फंड तैयार कर सकें। इसकी खास बात है कि ये सरकार समर्थित योजना है, इसलिए इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। यानी अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते और लंबे समय के लिए पैसा सुरक्षित तरीके से लगाना चाहते हैं, तो PPF आपके लिए विचार करने योग्य विकल्प हो सकता है। जी दोस्तों, अक्सर हर कोई चाहता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपनी सेविंग्स नहीं करना चाहते। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जो समय अगर हमने इंजॉय नहीं किया, ये भी ज़रूरी है दोस्तों कि जब ये समय जो हमारे हाथों में, ये से अगर हमने इंजॉय नहीं किया तो सेव करके हम क्या ही करेंगे। क्योंकि आज का दौर, आज का समय इस तरह से चल रहा है कि अगले ही पल कौन कब किसे छोड़कर चला जाए, क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि इस पल को एंजॉय कर लिया जाए, लेकिन फिर भी हम सेविंग्स की तरफ ध्यान देते ही हैं कि आने वाला कल हमारा सुरक्षित हो सके, हम बचत कर सकें। लेकिन बचत करें तो कहाँ करें, क्योंकि आज के समय में किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में हमें कुछ कुछ ट्रस्टेड जो है चीज़ें, उस पे ही हमें विश्वास करना चाहिए। ट्रस्टेड जो हमारे भरोसेमंद सोर्सेज हैं, तो उस पे हमें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, आप निवेश करना चाहते हैं, आप बेहतर तरीके से अपने पैसे को लगाना चाहते हैं। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास बातचीत आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। फिलहाल बातचीत के साथ साथ दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे से गीत भी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को एक और प्यारे से गीत की ओर।

दोस्तों, बातचीत और मनोरंजन का सिलसिला आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहेंगे फिलहाल 11 बजे तक। जी दोस्तों, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का सफर आप सभी के लिए रहता है बातचीत और मनोरंजन से भरा हुआ। तो आइए बातचीत का रुख करते हैं एक खास जानकारी की ओर। दोस्तों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे नु ललकार नौजवानी दी पुकार अभियान की टी शर्ट लॉन्च करके जो है वो शुरुआत की। इस अभियान के तहत जो है 9 अक्टूबर 2026 को नालागढ़ में मैराथन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उनका कहना है कि युवाओं को नशे की बुराई से बचाने और उनकी ऊर्जा को खेल, रचनात्मकता और अन्य सकारात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ने के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। राज्य सरकार नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और नशे के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत करवाने के लिए एंटी चिट्टा अभियान के तहत निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य केवल नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करना है। 9 अक्टूबर को आयोजित होने वाली मैराथन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से नशे के खिलाफ सामूहिक संकल्प का मजबूत संदेश दिया जाएगा। जी दोस्तों, तो आज नशे की बात पे अगर हम थोड़ी सी भी नज़र डालें तो बहुत ही गंभीर सा ये मामला है दोस्तों, क्योंकि जिनके हाथों में देश का भविष्य जाने वाला है, देश जिनके हाथों में जाने वाला है, यदि आज वो नशे में भटक जाएंगे राह को, तो सोचिए उनकी ज़िंदगी किस तरह से प्रभावित हो सकती है और कैसे वो आगे चल के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें, आखिर ये नशे की और क्यों युवा पीढ़ी जो है वो बढ़ती जा रही है। वैसे तो हर एक प्रयास किए जा रहे हैं कि इसे जो है कम किया जा सके, इस पर लगाम लगाया जा सके, लेकिन बात वही है कि जब तक हर एक इंसान के अंदर से ये सोच नहीं जागेगी कि पहले शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी, हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, तब तक हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो सबसे पहले हमें खुद को इसके लिए जो है तैयार करना होगा, अपने घर से जो है, घर पे अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं तो पहले हमें वहाँ से शुरुआत करनी होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुँचाई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। और पोषण माह जो है वो आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों, मना रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर किस तरह से हमारा खान पान जो है खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए होना चाहिए और आंगनवाड़ी की जो भूमिका हमारी ज़िंदगी में रहती है तो उसे बेहतर तरीके से इस बार जो है उजागर किया गया है। और हमारी आंगनवाड़ी यानी कि हमारी जिम्मेदारी, हर एक सदस्य की जिम्मेवारी, तो उसी पे फोकस किया गया है और इसी से जुड़ी बातचीत जो है वो आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी दोस्तों, डॉक्टर अनुपमा संधल जी से बातचीत के दौरान। तो बातचीत से पहले एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर लेकर चलते हैं आप सभी को उस खास बातचीत की ओर।

0: रेडियो गुंजन धर्मशाला त्रिदोसो समय समय के साथ आप सभी के लिए नई नई जानकारियां नई नई अपडेट्स जो है आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहती है और हम कामयाब भी होंगे इसमें ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे जो जागरूकता उद्देश्य रहता है आप सभी तक बातें पहुंचाने का, जिससे कि आप सभी अपनी जिंदगी की रूटीन में थोड़ा सा बदलाव ला सके, यदि कुछ गलत हो भी रहा है तो उसे सही कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ हम आप सभी तक जो है हर एक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आज भी आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ एक बहुत ही खास बातचीत के साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम जो है वो 9 सितंबर से जो है 8 अक्टूबर तक पोषण माह जो है वो मना रहे हैं। तो जहां खान पान की बात आ जाती है तो वहां कुछ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहती है कुछ कुछ जगहों पे, तो उसी पे आज हम नजर डालेंगे और किस तरह से जो है ये चीजें रहती हैं, कैसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और इस बातचीत में आज आप सभी जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान के साथ। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अनुपमा संधल मैम। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बातचीत की मैम के स्वागत के साथ। तो मैम स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: थैंक यू।
0: तो मैम सबसे पहले, वैसे तो हमारे दोस्त बहुत सारे जानते ही होंगे आपके बारे में, लेकिन फिर भी एक बार हम बताना चाहेंगे कि आप कहाँ जो है काम करते हैं, कहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कहाँ से हैं आप।
1: जी, मेरा नाम अनुपमा संधल है। मैं पोषण खाद्य एवं या अभियांत्रिकी विभाग में प्रोफेसर एंड हेड के पद पर कार्यरत हूँ। ये डिपार्टमेंट जो है वो हमारा

0: चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है, तो वहाँ पर हम पोषण और खाद्य विज्ञान से संबंधित कोर्स होता है जो वहाँ पे उस कॉलेज में मैं कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ बीएससी कम्युनिटी साइंस है जिसमें कि एक डिसिप्लिन होता है फूड एंड न्यूट्रिशन, खाद्य एवं पोषण। इसके अलावा हम लोग जिन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वो हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के छात्र और छात्राएं। इसके अलावा हमारे विषय में एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि खाद्य एवं पोषण से संबंधित जितने भी हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। और मैं चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से।
1: जी दोस्तों, तो देखिए हम तो सिर्फ खाने तक सीमित रह जाते हैं कि दो वक्त की रोटी है बस मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए उसके लिए कोर्सेज भी जो है हमारे लिए अवेलेबल हैं, तो अगर कोई भी बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उस फील्ड में आगे बढ़े, किसी का इंटरेस्ट है कुकिंग का या किसी भी तरीके से, तो वो जरूर इन चीजों को बारीकी से समझ सकते हैं कि किस तरह से किस चीज को जो है बनाना चाहिए, किस तरह से कौन सी खाद्य सामग्री जो है किसके लिए बेहतर है, किस तरह से उसमें जो है हमें और बेहतर बनाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम बिना जानकारी के चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हैं और उससे नुकसान भी फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो हम पोषण माह मना रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए कि इस बार की जो ये थीम है ये क्या रखी गई है और क्या इसके जो उद्देश्य है वो किस तरह से है।
0: जी, पहले राष्ट्रीय पोषण माह की जगह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता था, मतलब 7 दिन का समय होता था
1: जी।
0: लेकिन 9 वर्ष पहले से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण माह में तब्दील किया गया ताकि पोषण और खाद्य से संबंधित जानकारियां लोगों को दी जा सके। और इस दौरान बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जिसमें कि उनको जैसे अपनी जो लोकल रेसिपीज हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, जो आपके लोकल फूड होते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक, बहुत सारे खाद्य सामग्री जिसको हम भूलते जा रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण और स्वास्थ्य का सीधा तालमेल है तो उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। तो पिछले 9 वर्षों से राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो मनाया जाता है। तो कभी ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक होता है और कभी 2 दिन आगे 2 दिन बाद होता है, मतलब 30 दिन का समय इसको दिया जाता है। तो वर्ष 2026 में राष्ट्रीय पोषण माह 9 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। तो इस हर बार जो है राष्ट्रीय पोषण माह जब मनाया जाता है किसी एक थीम पर मनाया जाता है, कोई एक मुख्य उद्देश्य होता है उसका, किसी एक थीम पर होता है जिससे संबंधित जानकारियां जो होती हैं वो लोगों को दी जाती हैं, चाहे अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को दी जाती हैं। तो इस बार का जो राष्ट्रीय पोषण माह है उसका जो थीम है वो है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेवारी। तो मतलब कि आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं, धात्री माताएं जाती हैं, गर्भवती स्त्रियां जाती हैं और किशोरियां जाती हैं। तो ये सभी हमारे आने वाले राष्ट्र का एक मतलब जो भविष्य में हमारे जो निर्माण करने वाले लोग हैं जो कि हमारा राष्ट्र का गुरूर होंगे, तो इसलिए इन सब का सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस बार जो है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेवारी ये मेन थीम है इसका, और उसके अंदर 5 सब थीम्स हैं जिसमें अलग अलग थीम्स हैं जिसके अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं। तो उसमें पहला थीम है कि भोजन में डाइटरी डाइवर्सिटी, मतलब कि भोजन में विविधता होनी चाहिए, एंड प्रोटीन इंटेक, मतलब डाइटरी डाइवर्सिटी मतलब होता है कि हम एक ही किस्म का खाना खा रहे हैं, एक ही अनाज खा रहे हैं, एक ही दाल खा रहे हैं, तो उसमें जो भी पोषण है वो रूटीन में चला हुआ है। जब हम विविधता लाते हैं, जैसे आप आज के दिन एक दिन सोमवार को आपने कुछ खाया तो मंगलवार को आपका खाना कुछ और होना चाहिए, सवेरे को कुछ खाया तो शाम को कुछ और होना चाहिए, तो इस तरीके से ये क्या है कि विविधता आती है, रोज आप कोई ना कोई पौष्टिक तत्व अलग से, क्योंकि एक या दो तरीके का भोज्य पदार्थ जब आप लेते हैं तो वो हमारी सारी पोषण की जरूरतों को पूरा नहीं करता है, तो इसलिए भोजन में विविधता लाना बहुत जरूरी है। और इसी थीम का दूसरा हिस्सा है प्रोटीन इंटेक, मतलब कि जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जो बच्चे बढ़ रहे हैं बढ़ोतरी की तरफ है, माता को जो गर्भवती माता है उसको धात्री माता के रूप में बनने के लिए दूध प्रोड्यूस करना है, तो उसका शरीर तैयार होना चाहिए। और बाकी जब एक सही उम्र तक हम पहुंच जाते हैं उसके बाद हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए में भी, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, तो उनको बनाए रखने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो मुख्य समस्या हमारे यहाँ होती है प्रोटीन की कमी की। प्रोटीन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती है, और सबसे बड़ी बीमारी है अनीमिया। अगर हमारे भोजन में लौह तत्व है और प्रोटीन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो प्रोटीन हर तरीके से बहुत जरूरी है, तो प्रोटीन का रोज की रोज हमारे खाने में होना बहुत जरूरी है। और सबसे आसान तरीका है कोई भी दाल आपकी रोज के आहार में होनी ही चाहिए। तो वो दाल जो है वो एक प्रोटीन का आहार है, जो हम कह सकते हैं कि शाकाहारी, अदर नहीं तो जो मांसाहारी हैं उनके लिए अंडा है, चिकन है, मांस मछली सब तरीके की चीजें हैं, लेकिन मुख्य समस्या आती है शाकाहारी लोगों के साथ। तो इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे वर्ष 2023 में बहुत सारे हमारे मोटे अनाज के बारे में जानकारी दी गई, और पिछले 3 वर्षों में इसके बारे में लोगों को बहुत जागरूक किया गया। तो जो हमारे मोटा अनाज होता है उसका एक दो कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जो मोटा अनाज है, एक तो सबसे बड़ा उसका फायदा ये होता है कि जिस क्षेत्र में वो उगाया जाता है वहां के लोगों को उसको खाने की आदत होती है, उसके बारे में वो जानते हैं, उसको कैसे पकाया जाता है ये उनको जानकारी होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो मोटे अनाज हैं, कोई ना कोई जो है अनाज जो है किसी पर्टिकुलर जो पौष्टिक तत्व है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा होती है। जैसे हम लोग सियोल खाते हैं, सियोल जो है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सीधा बकवीट है, जैसे दड़ू जो आता है उसका जो है उसमें जो है सुपाच्य आसानी से पचता है, और जो हम व्रत वगैरह में खाते हैं तो आसानी से पचता है, और जो लोग गेहूं को ढंग से नहीं पचा सकते हैं उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा थीम जो इस बार का राष्ट्रीय पोषण माह का है उसमें ये है कि आप जब जो आंगनवाड़ी है वो हमारी भी जिम्मेवारी है, हम हर चीज को नहीं छोड़ सकते कि भी गवर्नमेंट ही करेगी तो वही होना चाहिए, तो हमारी भी जिम्मेवारी है। तो अब इस बार हमारी सरकार ने ये कहा है कि जो जितने भी आंगनवाड़ी हैं उनके आंगनवाड़ी मैनेजमेंट सेंटर्स होने चाहिए, उसमें गांव से भी लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि वो ये देख सकें कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे जा रहे हैं उनको क्या खाने को दिया जा रहा है, सही है कि नहीं है, और उसका मतलब हिसाब किताब भी होना चाहिए कि जो आंगनवाड़ी बोल रहा है कि हम ये बच्चों को दे रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि अगर हमारे बच्चे जा रहे हैं हम कभी भी चेक कर सकते हैं कि भाई वाकई वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कोई समस्या तो नहीं है बच्चों में। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि जिस गांव में जो आंगनवाड़ी खुली है वहां हमारे ही बच्चे जा रहे हैं, अगर हम भी उनकी कोई मदद कर सकते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, कोई सब्जी होती है उस तरीके की चीजें अगर हम दे के उनकी मदद कर सकते हैं तो वो हमारे ही बच्चों का पोषण करेगा। इसके अलावा है कि हॉट कुक्ड मील्स, इसका एक फायदा ये है, तीसरा जो थीम है हॉट कुक्ड मील का, मतलब ये है कि पहले होता था कि कभी राशन दे दिया जाता था, फिर आया कि बनी हुई चीजें दी जाती थी, लेकिन कई बहुत सारी उसमें भी समस्याएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जिन बच्चों के लिए या जिन लोगों के लिए ये चीजें दी जाती हैं उन लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो हॉट कुक्ड का मील मतलब का ये है कि वहां पर ही खाना बनेगा, और जैसे गर्म खाना दिया जाता है वैसे गर्म खाना दिया जाए, ताजा खाना, तो इसमें बहुत सारे हमें फायदे हो सकते हैं बच्चों के लिए, कि सबसे बड़ी बात है कि बासा खाना नहीं होगा, कोई रखरखाव का दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो खाना वो जिस समय बने उसी समय बच्चों को या जो किशोरियां वहां रजिस्टर्ड होंगी उनको इस तरीके से दिया जा सकेगा। चौथा इसमें थीम है कि पहले जो 1000 दिन है, 1000 दिन है बच्चे के जिंदगी के, वो सुरक्षित होने चाहिए। तो वो 1000 दिन में जब गर्भ में शिशु आता है तब से लेके 2 वर्ष तक उसका पूरा जो ये 3 साल एक तरीके से 2 साल 9 महीने का समय है उसको कवर किया जाता है। तो गर्भवती माता का भी पोषण होना बहुत जरूरी है। अगर गर्भवती माता का पोषण सही होगा तो उसके पेट में जो शिशु पल रहा है उसका भी जो ग्रोथ है सही होगी, है ना। उसको क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, प्रोटीन की कमी है तो बच्चा कम भार वाला पैदा होगा, आयोडीन की कमी है तो अब तो आयोडीन काफी, लेकिन हमने पहले भी एक दो बार हमने बात करी है कि आयोडीन युक्त नमक तो हम खरीदते हैं लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो आयोडीन है, इस तरीके से B12 है, B12 की कमी भी हो जाती है गर्भ धारण के दौरान, तो उससे बहुत सारे बच्चों में समस्याएं हैं। तो जब गर्भस्थ होगा शिशु उससे पहले भी जो होने वाली माता है उसका भी पोषण होना बहुत जरूरी है, सही पोषण होना बहुत जरूरी है। तो 1000 दिन में यही है कि गर्भवती माता और मतलब गर्भ धारण करने से पहले भी उसका पोषण मतलब तैयार होना चाहिए उसका शरीर, गर्भावस्था के दौरान जब वो दूध पिला रही है तब उसका पोषण, जब उसका दूध पिलाते समय उसका पोषण सही होगा तो दूध की जो बच्चा दूध पी रहा है उस दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो बच्चा भी अपने आप ही उसका जो ग्रोथ है सही होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम उसको वीनिंग फूड या ठोस आहार इंट्रोड्यूस करते हैं धीरे धीरे, अन्नप्राशन जैसे करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे बच्चा फैमिली जो मील कहते हैं घर का खाना उसके ऊपर आता है और बढ़िया खाना उसको धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और लास्ट थीम है कि भी जब गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि बहुत जरूरी है, ज्यादातर क्या होता है महिलाएं इग्नोर हो जाती हैं, तो लेकिन ये हमें भी हमारी भी जिम्मेवारी है कि जो आने वाली जेनरेशन को जन्म देने वाली है जिसके ऊपर हमने आस लगाई हुई है कि वो हमारी आने वाली जेनरेशन को जन्म देगी, तो उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी जो अगली जेनरेशन है वो स्वस्थ होगी। तो ये इस बार का राष्ट्रीय पोषण माह में 5 सब थीम है जिसके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी सोसाइटी को उन्होंने इन्वॉल्व किया है कि सबकी जिम्मेवारी है माँ का और बच्चे का पोषण का ध्यान रखने की।
2: जी दोस्तों, तो अनुपमा मैम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतनी खास इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे प्यारे प्यारे से दोस्तों तक पहुंचाई है। जी दोस्तों, तो ये पोषण माह सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं, सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं, इसके पीछे जो मोटिव है, तो कोशिश थी दोस्तों कि जो उद्देश्य इस माह का रखा गया है, जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से इस माह को सेलिब्रेट किया जा रहा है वो उद्देश्य आप सभी लोगों तक पहुंच सके और वो पूरा किया जा सके, तो वो आप सभी की भागीदारी से होगा, आप सभी के एफर्ट्स से होगा। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी ने सुनी दोस्तों अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और इस जानकारी को आप सभी तक पहुंचाया डॉक्टर अनुपमा संधल जी के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

दोस्तों कहते हैं अकेला बैठा इंसान कभी अकेला नहीं बैठता, उसके साथ बैठती हैं वो तमाम उलझनें जिनमें वो हर पल फंसा हुआ होता है, उसके साथ बैठती हैं वो सारी परेशानियां जो अपनों और परायों से मिली हो, उसके साथ बैठती हैं वो भावनाएं जिनके साथ हर कोई खेल कर गया हो, उसके साथ बैठते हैं वो झूठे रिश्ते जो सिर्फ मतलब और स्वार्थ से निभाए गए हों, और उसके साथ बैठी होती हैं वो सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां जिनको पूरा करने के लिए वो अपने ख्वाबों को कल्पनाओं में बदल देते हैं। यही है जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी का एक छिपा हुआ सा सच। फिलहाल इन्हीं कुछ बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

दोस्तों, पहले के जमाने में बच्चे मिट्टी में खेलकर बड़े होते थे, आज मोबाइल की स्क्रीन देखकर बड़े हो रहे हैं। पहले शाम होते ही मोहल्ले में बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी, आज हर बच्चा अपने कमरे में बंद है। पहले पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं, मुसीबत में परिवार बन जाते थे। किसी के घर चूल्हा ना जले तो दूसरे घर में खाना पहुंच जाता था। आज रिश्तेदार एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी मिलने के लिए समय नहीं मिलता। पहले जिंदगी में चीज़ें कम थी लेकिन खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी, आज चीज़ें बहुत हैं लेकिन सुकून कम है। जी दोस्तों, तो ये है जिंदगी का असली सच। और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे थे अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो बहुत खास बातें आप सभी के साथ साझा की हैं दोस्तों, फिर चाहे वो पोषण से संबंधित हो या फिर हमारी जिंदगी से जुड़ी कुछ छोटी मोटी सी बातें। खैर, छोटी छोटी ही कई आने वाले समय में बड़ी बातें बन जाती हैं। तो फिलहाल समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक नई जानकारियों के साथ, नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूंगा सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: आलू,
1: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
2: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 FM पर आप हैं और

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जाएगा ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी के अपनी रेडियो दोस्त रुचेता के साथ। तो जी दोस्तों, और इस बदलते मौसम के साथ, बदलते खानपान के साथ बहुत सारी बीमारियां भी घर आती हैं, ये आप सभी जानते हैं। और अक्सर ऐसे में हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहती है, लेकिन सतर्कता कैसे आएगी, ये जानकारियां हम तक कैसे पहुंचेंगी, जब कुछ एक्सपर्ट्स लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ खास लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और आप सभी तक जो है वो जानकारियां पहुंचाएंगे। तो ये कोशिश रहती है रेडियो गुंजन धर्मशाला की दोस्तों की आप सभी तक एक छोटी से लेकर जो है वो बड़ी से बड़ी बात जो है वो आप सभी तक पहुंचे। तो आज अनुपमा संधल जी जो कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से हैं और उन्हीं से जो है हम बहुत सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाते भी हैं, तो आज भी एक बहुत ही खास बातचीत लेकर आए हैं दोस्तों। तो आइए स्वागत करते हैं मैम का इस बहुत ही खास बातचीत में। मैम स्वागत है आपका हमारे रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: थैंक यू
0: जी। तो जैसे कि हम बात करते हैं इस बदलते मौसम की ही अगर हम नजर डालें इस पे, और पोषण माह भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ ही, लेकिन साथ ही हम बात करें जो आज के समय में हमारी जीवन शैली जो है वो एकदम से बदल चुकी है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो बड़ों की हो, चाहे वो बुजुर्गों की हो, किसी की भी हो, हर कोई अपने रूटीन से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक डिसबैलेंस चीजें जो है वो सामने आती हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि इस पे पहले थोड़ा सा हम नजर डालें कि हमारी जीवन शैली जो है ये आज के समय में किस तरह से चल रही है।
1: नमस्कार सभी को। आजकल की जीवन शैली हमारी जो पिछले 10 साल पीछे जब हम जाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा बदल चुकी है। एक हो गया है कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया। सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि मतलब हमारा जो बैठने का समय है वो बहुत कम हो गया। चलना, सीढ़ियां चढ़ना, दौड़ना, ये सारी चीजें जो है हमारी, या जो जैसे कहते हैं ना फिजिकल शारीरिक कार्य करना, वो हमारा बहुत कम हो चुका हुआ है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा खान पान
0: जी।
1: तो जो खान पान है जो हमारा की वो एक तरीके से कहते हैं बहुत गड़बड़ हो गया हुआ है। तीसरा है हमारा समय,
0: बिल्कुल
1: जो है समय, जो हम कहते हैं एक हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, जिसमें कि हमने अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। पहले जो होता था कि लोग सुबह उठते थे 5 बजे 6 बजे उठते थे, अपना पानी पीते थे, थोड़ा सा सैर करते थे, थोड़ी हल्का व्यायाम, जरूरी नहीं है कि बहुत कठोर या शारीरिक व्यायाम किया जाए, हल्का फुल्का व्यायाम, चलना दौड़ना, इस तरीके से भी काम चल जाता है। उसके बाद नाश्ता होता था, उसके बाद सब लोग अपने कार्यों पर, अपने जो कार्य क्षेत्र पे चले जाते थे, वहां पर जो लंच होता था वहां लंच चाहे साथ लेके जाते थे या वहां पर होता था, फिर शाम को आना, मतलब जो भी ये रूटीन होता था और होता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रात्रि भोजन होता था वो होता था 8 से 9:30 तक के बीच में
0: जी।
1: आजकल वो सारी चीजें बदल चुकी हुई हैं। हमारा जो डिनर टाइम है, रात्रि भोज का समय है, वो 10, 11, 12 तक बजे तक भी चला गया है।
0: बिल्कुल।
1: और खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज्यादा ग्रसित है इससे, क्योंकि युवा पीढ़ी का जो सोने का समय है, जो हमारा पहले सोने का समय होता था 10 से 11 बजे के बीच में होता था, आजकल हम कह सकते हैं जब जिसका डिनर टाइम ही 12 बजे है, 1:30 बजे है, तो उनका सोने का समय कहाँ चला जाएगा। जिस समय हम बात कर रहे हैं कि 5 बजे उठने की, वो लोग 4 बजे सोने जा रहे हैं। तो एक तरीके से हमने क्या किया कि जो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक थी ना वो एकदम से डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। जिस समय हमें जगना चाहिए उस समय वो सोने जा रहे हैं, और जिस समय उसको सोना चाहिए उस समय वो जगे हुए हैं पूरी तरीके से। तो उससे क्या है कि हमारा जो शरीर है उसमें एक तरीके से असंतुलन हो चुका है, क्योंकि जो शारीरिक क्रियाएं हमारी अंदरूनी चलती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, चाहे वो भोजन पचाने का कार्यक्रम काम है जो हमारी जो यंत्रिका है वो करती है, उससे रिलेटेड बाकी चीजें होती हैं, वो सब चीजें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। जीवन शैली जो है डिस्टर्ब होने से क्या हुआ कि बहुत सारी बीमारियों को हमने आमंत्रित कर लिया हुआ है
0: जी।
1: तो आजकल जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही पहले क्या होता था, सबसे बड़ी बीमारी जो सबसे मशहूर कह सकते हैं हम डायबिटीज, तो डायबिटीज होती थी, पहले माना जाता था कि 42-45 साल की उम्र के बाद होगी, या ज्यादातर होता था 50 साल की उम्र के बाद। आज की जो डायबिटीज है वो यंग जनरेशन में हो रही है। बच्चों में जो बीमारी डायबिटीज की हो रही है वो अलग तरीके की, जो टाइप 1 डायबिटीज हम बोलते हैं वो इंसुलिन सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है उसके कारण होती है। लेकिन जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, यंग जनरेशन में हो रही है डायबिटीज, वो क्या मतलब आप सोचिए कि उनका इतना शुगर लेवल हाई है कि वो उनको पता ही नहीं है कि कैसे खत्म करना है। मुख्य कारण क्या है कि जो हमारा खाना है उसमें ज्यादातर हमारी रिफाइंड सीरियल जिसको हम बोलते हैं रेडीमेड चीजों के ऊपर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। ब्रेड खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, इस तरीके की चीजें, तो उसमें तीन तरीके के नुकसान करने वाले तत्व हैं, भोजन तत्व हैं, वो हैं जैसे रिफाइंड सीरियल जैसे हम कह रहे हैं मैदा है? तो मैदा में कोई पौष्टिकता नहीं है, सिर्फ वो एक एनर्जी का सोर्स है, रेडी टू प्रिपेयर फूड जो 2 मिनट में 10 मिनट में खाना बन जाए। तो ऐसे भोजन में क्या होगा, हमेशा नमक या चीनी ज्यादा होगी। तो जितनी हमारी शरीर की जरूरत है उससे ज्यादा हम नमक और चीनी ले रहे हैं, तो चीनी ज्यादा लेने से, और फिर दूसरी बात जो हमने पहले करी कि हमेशा बैठे रहना, कोई भी आपने यंग जनरेशन में बच्चा नहीं देखा होगा जो स्कूटी के बिना नहीं चलता। आप सोचो घर के बाहर की गेट से लेके अगर पास में 2 दुकान छोड़ के भी उसका जाना हो तो उसने स्कूटी पे ही जाना है ना। तो मतलब क्या है कि हमने इतना भी चलना छोड़ दिया, तो जो हमने एक्स्ट्रा या जो भी ऊर्जा हमने एक्स्ट्रा ली है वो शरीर में इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो क्या है वो जमती जा रही है, मतलब वो स्टोर होती जा रही है हमारे शरीर में। और उसके परिणाम स्वरूप क्या है, या तो युवाओं में डायबिटीज की बीमारी आ रही है, या सबसे जो पॉपुलर है वो है मोटापा। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि मोटापा आ गया, अब इसको कैसे खत्म किया। और मोटापा जब आता है तो उसके साथ और बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो जो एक ये है ना। फिर अभी जैसे मैंने आपको बोला कि नमक ज्यादा है ना, तो नमक जब भी ज्यादा होगा तो नमक ज्यादा होने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन है ना। तो हाइपरटेंशन बढ़ने से क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने, जब भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा तो हमारा जो हृदय है सही ढंग से काम करेगा। लेकिन ब्लड प्रेशर मतलब धमनियों में जब खून का प्रवाह तेजी से होगा, ज्यादा होगा जितना प्रेशर चाहिए, तो क्या होगा, हमारे दिल को भी ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और हम आमंत्रित करते हैं दिल संबंधी हृदय रोगी कंडीशंस को। उसके बाद आता है कि जो ओबेसिटी जैसे मोटापा तो हमने बात कर ही लिया
0: जी।
1: उसके बाद क्या है कि जब भी डायबिटीज होगा या दिल से संबंधित बीमारियां होंगी तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी किडनी पे। तो किडनी पे जब बुरा असर पड़ता है तो बहुत जल्दी जो है लोगों में किडनी खराब होने की बीमारियां दिख रही हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है, हम एडवांस हो गए हैं बहुत ज्यादा, हमारा जो स्क्रीन टाइम है बढ़ गया है।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो मोबाइल पे है, चाहे लैपटॉप पे है, चाहे आपके डेस्कटॉप के ऊपर है, कहीं पर भी है, तो कोई भी चीज, कुछ भी नहीं है तो टीवी के सामने बैठे हुए हैं। तो जो स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या है कि जो मानसिक तौर से जो युवा हैं, जो हमारे जिसको हम कहते हैं ना एंग्शियस है, एंग्जाइटी है, उनमें उत्तेजित रहते हैं हमेशा, गुस्सा है उनमें बहुत ज्यादा है, तो गुस्सा होने से अपने में मानसिक स्थिरता नहीं है, साथ साथ जो हमने पहले बीमारियां डिस्कस करी उनको वो इनवाइट करते हैं। तो ये जो है हमारी जो नई जीवन शैली है, तो इसलिए इनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस या जीवन शैली आधारित बीमारियां भी बोलते हैं, या हम इनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा नहीं है कि मुझे है एक बीमारी तो आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपको हो जाएगी, मेरे लाइफस्टाइल से मेरे को होगी और आपके लाइफस्टाइल से आपको होगी, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक दूसरे से नहीं लगेगी, जो आपका रहने का तरीका है उसी से लगेगी। तो ये इसमें समस्या है हमारी नई जीवन शैली में
0: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी ने देखा कि वाकई में जीवन शैली तो हमारी बिल्कुल बदल चुकी है, और ये जो छोटी सी उम्र में बच्चों को नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले तो सुनने को मिलता ही नहीं था छोटी उम्र में बीमारियों का नाम, और बड़ों में भी बहुत कम मिलता था क्योंकि खान पान उनका सही होता था उस समय में, बाहर का खाना जो था वो अवॉइड ही करते थे ज्यादातर। तो ऐसी चीजें जो है हमारे सामने आती हैं, इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो और भी इसमें हम नजर डालेंगे और भी हम मैम से जानेंगे कि किस तरह से इन्हें कम किया जा सकता है या अपने खान पान पे ध्यान दिया जा सकता है। फिलहाल लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं आप सभी के साथ इस खास बातचीत के साथ।

0: दोस्तों इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ, क्योंकि जब भी खाने की बात आती है तो मुंह में पानी आ जाता है और जब बीमारियों की बात आती है तो मन में डर आ जाता है
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बहुत खास बात है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है मैम कि जो चाहे कि हम बीमारियों से घिरे रहें हर समय। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि ये बीमारियां जो है वो हमारे खाने से भी संबंधित हो सकती है, क्योंकि अक्सर हम क्या कहते हैं मैम, एक बात मैं आपसे बताऊं, क्योंकि जब हमें कोई बीमारियां लग जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज या कल पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हम अपने खाने को क्यों छोड़े, जो हम खा लेते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, खाने को छोड़े नहीं बट खाने को सुधारे
0: जी।
1: जैसे अभी हमने किया कि जैसे डायबिटीज की हमने बात की
0: जी।
1: यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा इसकी है और आपको हैरानी होगी कि WHO ने बोला है कि 2030 के बाद सबसे ज्यादा जो डायबिटीज के मरीज होंगे वो भारत में होंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो डायबिटिक मरीज होंगे वो होंगे यंग जनरेशन, मतलब जो 35 साल से कम उम्र के लोग होंगे। तो मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि भी हम कैसे कर सकते हैं। तो डायबिटीज होने का मुख्य कारण है कि जो हम रिफाइंड सीरियल्स जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम आटा लेते हैं, ठीक है आजकल लोगों के पास समय नहीं है, हम लोग बाजार का आटा लेते हैं। आप कोशिश करिए कि उसको मिला जुला के आटा जो है इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सिंपल उसमें जैसे एक कटोरी आपने गेहूं का आटा लिया तो उसमें एक मुट्ठी जो है बेसन मिला दो। रागी का आटा है बाजार में अवेलेबल है, सोयाबीन का आटा है वो अवेलेबल है, मतलब इस दो तीन तरीके की चीजें। और हमेशा जो है हर हफ्ते आप बदल दो, मतलब एक हफ्ते आप रागी का आटा ले लो, एक हफ्ते आप बेसन डाल दो या चने का आटा ले लीजिए, है ना, एक हफ्ते आप सोयाबीन का आटा, इस तरीके की चीजें और भी जो भी आपके पास है जैसे जौ का आटा है, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। तो उससे क्या है कि हमें चाहिए होता है, जो हमने कार्बोज की बात करते हैं ना, तो जो हम सिर्फ आटा बाजार का खाते हैं तो उसमें जो है एक तरीके से वो गुण नहीं है जो हम घर के पीसे गेहूं के आटे में होती है। तो हमें चाहिए वो कार्बोस जो धीरे धीरे हमारा जो खून में चीनी की मात्रा को बढ़ाए, मतलब डाइजेस्ट धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे वो पचेगा। लेकिन जब हम सिर्फ आटा का खासकर बाजार वाला खाते हैं तो उसमें सिवाय स्टार्च के कुछ नहीं होता, तो वो सिर्फ हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। तो जब हम ये चीजें मिला देते हैं, या हम जैसे कहते हैं ना मोटा पिसा हुआ आटा, गेहूं का जो घराट में पिसा हुआ आटा जब घर में से, तो उसमें क्या होता है गेहूं का छिलका भी साथ में, जो बारीक सा छिलका होता है ना वो भी साथ में आता है, तो वो क्या करता है धीरे धीरे, मतलब वो एक उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, तो फाइबर की मात्रा होने से क्या होता है कि वो डिले होगा, डाइजेशन जो है डिले होगा, तो वो क्या है आपका जो शुगर का लेवल है बढ़ाएगा नहीं, और पेट आपका जल्दी भरेगा। नेचुरली आप जब फाइबर की मात्रा ज्यादा खाएंगे तो जहां पर आप रिफाइंड आटे से 3 या 4 रोटी खाएंगे तो वो आप 2-2.5 में ही आपका पेट भर जाएगा
0: जी।
1: दूसरा आप इसमें कर सकते हैं कि ताजी फल और सब्जियां, महंगे फल और सब्जियां लेने की कोई जरूरत, जो भी आपकी मौसमी फल और सब्जी, जैसे आजकल घिया है, कद्दू है, खीरा मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं, अमरूद है, सबसे ज्यादा विटामिन सी है उसमें, है ना, तो ये सारी चीजें जो है आपके आहार में होनी चाहिए। दूध या दूध के बने पदार्थ, जो लोग दूध पीना नहीं पसंद करते, दही रोज खाइए, दिन में 2 बार आपको 2 कटोरी दही जरूर होना चाहिए, तो वो चीजें जो है आपके अपने आहार में शामिल करें।

0: दूसरी हमने बीमारी की बात करी थी जो वजन बढ़ जाता है, तो वजन भी इसी कारण से, थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, चलना फिरना। तो उसमें भी कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं कि एक तो ये है कि जो भी आपने खाने का समय रखा हुआ है कम से कम आप उसको नियम से उसी समय पर रोज खाना
1: फॉलो करें।
0: जैसे हमने पहले बात करी थी कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, वो सेट हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप 1:30 से 2 के बीच में खाना खाते हो ना, किसी दिन हम लेट हो जाते हैं काम करने पे, तो 1:30 बजे अगर हम अपना टिफिन खोल लेते हैं या खाना लगा के बैठते हैं, तो आपको 1:30 बजे जरूर एक बार अंदर पेट में लगता है कि नहीं मेरे को भूख लग गई है। हाँ। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो क्या होता है आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो एक तो ये है कि 4 से 6 घंटे से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो खानों के बीच में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जो डिनर है आपका, रात्रि खाना है, वो आपका कम से कम 9-10, मतलब वो हिसाब इसलिए है कि डिनर करने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, खाया और तुरंत सो गए, तो वो सबसे गलत आदत है, क्योंकि वो इन चीजों को बढ़ावा देता है, जैसे मोटापा है, डायबिटीज है, इन चीजों को। फिर है कि जब आप खासकर रात का खाना, क्योंकि रात के बाद, शाम को के बाद हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो रात के बाद आप ये सेट रखो कि रात का खाना खाने के बाद कुछ, चाहे घर के अंदर, कमरे के अंदर 15-20 चक्कर, मतलब कुछ कदम आपको 100 कदम चलने ही चलने हैं, ताकि वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही करेगा, तो खाना जो है ढंग से पचेगा और जहां पर उसका इस्तेमाल होना है वो होगा। तीसरी बीमारी हमने बात करी थी हाइपरटेंशन और उससे रिलेटेड, उसी से हृदय संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमारे लिए 5 ग्राम पूरे दिन में प्रति व्यक्ति 5 ग्राम नमक रेकमेंडेड है। तो हमें वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि सुबह से लेकर रात तक आप जो कुछ भी खा रहे हैं, जब एक आदमी का नमक आप जोड़ें तो वो 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेकमेंडेड 5 ग्राम है और हम जाते हैं 10 से 15 ग्राम में। तो आप सोचिए ना कि वो जो धमनियां हैं, जो रक्त, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, कितना वो बियर करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो हाइपरटेंसिव हो जाता है पेशेंट। और थोड़ा सा मैं ये भी कहूंगी कि थोड़ा सा हल्का व्यायाम या मेडिटेशन बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है रिलैक्स भी होता है और अंदरूनी फायदे तो होते हैं। फिर आता है हमारा, जो हमने बात करी थी स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने से, तो ठीक है वो हमारा कार्य क्षेत्र में हमारा काम है वो करना, लेकिन आपको ऐसे रखना चाहिए कि हर 1 घंटे के बाद, नॉर्मली लोग ये बोलते हैं, जितने भी जगहों पर आप बात करें वहां पर ये बोला जाता है कि जैसे आपने 1 घंटे कंप्यूटर के मॉनिटर पे काम किया, तो आपको चाहे उसी कमरे में 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक आप घूम लो, फिर बैठ जाओ, फिर काम ऐसे करो, मतलब ब्रेक करना, जो एक कहते हैं ना मोनोटनस ब्रेक करना या एक रूटीन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि क्योंकि हम एक जगह पर बैठे रहते हैं, उससे हमारा पानी का जो इनटेक है वो भी कम हो रहा है। लोगों की डिपेंडेंसी किस पे है, कोक पे, लिमका पे, वो सिर्फ चीनी वाले ड्रिंक है, उसमें कोई और पोषण तत्व नहीं है। इसके बजाय आप जो कोई भी आप सब मौसमी फल है आप वो काट के रख लो डब्बा अपने पास, बीच बीच में से 1 पीस 2 पीस आप लीजिए, उसमें जो भी आपके विटामिन और खनिज हैं उनकी जरूरत पूरी होगी, प्लस वो क्या होगा उसमें फाइबर की मात्रा, डाइट्री फाइबर जो होता है उसकी मात्रा भी सही होगी आपके शरीर के लिए। और पानी का इंटेक जो है एक व्यस्क के लिए, एक बड़े आदमी के लिए पानी का इंटेक जो है 2.5 से 3 लीटर होना चाहिए। तो वो उसमें इंक्लूडिंग है, आप अगर दिन में कोई चाय कॉफी इस तरीके की चीजें पीते हो, वो सारा पानी, तरी वाली सब्जी खाते हो, वो सब इंक्लूडेड है, तो इतना पानी आपको पीना ही चाहिए। तो मैंने ऐसे देखा है कि यंग जेनरेशन है जो हमारे युवा हैं और बहुत सारे बुजुर्गों में भी है कि वे पानी नहीं पी पाते हैं, 2 या 3 गिलास। तो आप सोचिए ना कि गिलास जो है 200 से 250 ml, इससे बड़ा नहीं होता, तो हम 1 लीटर भी नहीं पहुंच पा रहे उसमें। चाहे हम दाल में डाला हुआ पानी भी मिलाएं, तरी वाली सब्जी जो कुछ भी आप मिलाएं, तो हम 1 लीटर, जबकि आपकी कम से कम जो जरूरत है वो 2 लीटर की तो है ही है, अगर 3 लीटर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो कम से कम आप पानी का इंटेक 2 से 2.5 लीटर। उसमें एक दूसरा लाभ ये भी रहता है कि जो आपने मान लो कि एक्स्ट्रा नमक खाया है, चटनी अचार या ऐसी भी चीजें खाई हैं, तो अगर वो 5 ग्राम से एक्स्ट्रा नमक है तो वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा जो फालतू नमक है, क्योंकि जितना आपके शरीर में इस्तेमाल होना है उतना होगा और बाकी सब जो है छनने के लिए किडनी तक चला जाएगा, तो किडनी पे भी असर इसका ज्यादा पड़ता है। तो जो जितनी भी हम कहते हैं ना कि फालतू का खा रहे हैं, उसका असर हमारे हार्ट पे, दिल पे, हमारी किडनी पे, इन पे ज्यादा पड़ रहा है। बाकी पाचन शक्ति जो हमारी जो पाचन जो तंत्रिका है उसके ऊपर तो पड़ ही रहा है, बट ये जो दो हमारे जो ऑर्गन है उनके ऊपर भी बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है।
1: जी दोस्तों, तो खान पान के साथ देखिए, जहाँ खाना इम्पोर्टेंट है वहाँ पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं पीते हैं तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकती हैं। तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए, खास करके हम बात करें तो बरसात के मौसम में या सर्दियों के मौसम में हम पानी की मात्रा को थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है हमें पानी की क्वांटिटी जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना बेहद जरूरी, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो बरसात है, चाहे वो सर्दियों का मौसम है। तो जरूर इस बात पे हम एक बार फिर से वापस आएंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: 291.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम के हिसाब से हमारे जो खाने की चीजें होती है वो बदलती हैं, हमारे जो स्वाद होता है वो बदल जाता है। बरसात के मौसम में कुछ तला हुआ ज्यादा खाने का मन करता है, तो सर्दियों के मौसम में भी अलग तरीके, मतलब अलग अलग डिशेज का जो है एक अलग अलग पैटर्न रहता है। लेकिन जैसे मैम ने कहा कि सीजनेबल जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो हमारी सब्जियां होती हैं, तो जो जिस तरह से हम और खानों पे डिपेंड हो जाते हैं, तो उसी तरह से हमें इन चीजों को भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को जो है एक तरह से बैलेंस रखा जा सके। मतलब जो भी प्रॉपर मात्रा में चीजें मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। तो मैम, जैसे कि हम अक्सर, अभी आपने बात की थी कि जो हमारा खाने का जो एक ब्रेक होना चाहिए वो 4 से 6 घंटों के ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये मैं ये कहना चाह रही थी कि ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सेम रहता है या बच्चों के लिए अलग से है, बड़ों के लिए अलग से, बुजुर्गों के लिए अलग से?
1: नहीं, बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए है ऐसे कि बढ़ते हुए बच्चे हैं तो उनको बीच में आप दे सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो एक मिड मॉर्निंग आता है उसमें आप उनको कोई फल और इसी तरीके से, जैसे बुजुर्ग हैं या किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें भी हम डाइट शेड्यूल बदल
0: सकते
1: हैं। जैसे किसी को पेट में जलन की समस्या है, ठीक है, इस तरीके की समस्या आती है तो उनको क्या है, थोड़ा थोड़ा भोजन खाना देना पड़ता है, तो लेकिन भूख तो लगती है ना, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि बीच में
0: थोड़ी देर के बाद,
1: 2 से 2.5 घंटे बाद उनको, 2.5 से 3 घंटे बाद उनको इतना थोड़ी मात्रा में कोई ना कुछ हल्का फुल्का देते रहना चाहिए।
0: जी, तो बिल्कुल। तो अब आते हैं मैम कि जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, तो हर कोई जो है अपने मतलब कि घरों में तो रहते नहीं है, क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कोर्सेज करने होते हैं, बच्चों को अपनी सेटलमेंट देखनी होती है, तो हम कहीं बाहर जो है वो कोर्सेज के लिए निकलते हैं या फिर जॉब के लिए कहीं बाहर निकल जाते, क्योंकि गांव में हर चीज अवेलेबल तो नहीं हो पाती है। तो वहां हम आजकल ये भी देखते हैं कि ज्यादातर हम थोड़ा, जैसे हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि जैसे आपने कहा कि 9-10 भी बज रहे हैं, शाम के 11 भी बज रहे हैं, सुबह 8 बजे निकल कर जा रहे हैं, मतलब प्रेशर हमने अपने ऊपर इतना ज्यादा ले लिया होता है, तो वहां भी एक खाने की शेड्यूलिंग कहीं ना कहीं बिगड़ जाती। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं बाहर का खाना, ये जंक फूड वगैरह या फिर पैक फूड, जो आपने जैसे बताया कि जो 2-3 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, तो उस पे हम थोड़ा सा नजर डालते हैं।
1: जी, ये रहता है, जैसे हम कहते हैं इंस्टेंट फूड या जंक फूड्स कहते हैं, तो जंक फूड्स में जैसे आता है कि कितने सारे युवाओं को, बच्चों को देखा कि चपाती नहीं खाएंगे, मतलब खाना नहीं खाएंगे तो दे विल परचेज, वो एक चिप्स का पैकेट खरीद लेंगे और उसी से उनका पेट भर गया। बिस्किट की भी परिभाषा बदल गई है आजकल, बिस्किट आ गई है क्रीम वाले जो बिस्किट होंगे जैसे, तो मतलब अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हर समय क्रीम वाला बिस्किट तो उतनी ही हम चीनी की मात्रा हम ज्यादा ले रहे हैं, जबकि वो हमारी शरीर की जरूरत नहीं है। तो मतलब बच्चों को, युवाओं को, इन सबको इतना जागरूक होना चाहिए कि कभी कभी तो ठीक है जब आपने स्वाद लेना है या कुछ, ठीक है, लेकिन रूटीन में जब हम लेते हैं तो वहां पर आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बजाय इसके कि बिस्किट लें, नमकीन लें, इस तरीके की चीजें, आप कोई भी फल जो हमारा मौसमी फल है वो काट के, किसी को भी बना खाने में ज्यादा, जैसे केला है, अमरूद है, इनको काटने में कोई समस्या नहीं है। आजकल सेब आ गए हुए हैं बाजार में, रीजनेबल रेट में है, तो वो भी ले सकते हैं। तो जो भी हमारे पास फल है उनको खाइए। दूसरा तरीका क्या है, जैसे हम लोगों के घरों में पहले क्या होता था, लूंगी हुई दालें खाई जाती थी, जर्मिनेटेड जो इतने भी हैं वो खाए जाते थे। जर्मिनेशन बहुत इजी है, एक बार आप 5-6 घंटे के लिए भिगो दीजिए हरी मूंग की दाल को, काले चने को, अलग अलग, इन रखना सबको अलग अलग है, इनको आप भिगो दीजिए और फिर आप चाहे तो आप सूती कपड़े में बांध के ऊपर टांग दीजिए और उसको कपड़े को बीच बीच में गीला करते रहें, तो जो मूंग की दाल है उसमें तो 6-7 घंटे में आ जाती है, अंकुरीकरण हो जाता है। काले चने को थोड़ा टाइम लगता है, तो काले चने में 10-12 घंटे में आ जाता है, तो इनको आप अगर वैसे खाना चाहते हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं बिना कुछ मिक्स किए, और थोड़ा स्वाद बनाना चाहते हैं तो उसमें कच्चा जो टमाटर और प्याज काट के और चाट टाइप का हल्का बना लीजिए और खीरा वीरा सब, सो दैट कि उसका वॉल्यूम बन जाए तो, और वो पौष्टिक भी रहेगा। इस तरीके की चीजें, रोस्टेड मूंगफली ले लीजिए, नमक मत डालो एक्स्ट्रा ना, सिंपल आप लीजिए रोस्टेड मूंगफली, इस तरीके रोस्टेड चने, भुने हुए चने, ये सारी चीजें। अलसी खाते थे लोग, अलसी इतनी आजकल जो है सुपर फूड कहा जाता है अलसी को, क्योंकि या ये भी एक है जैसे मोटापा और इसकी तो डायबिटीज की हमने बात की, घुटनों में दर्द यंग लोगों को, युवाओं को होने लग गया, चल कमजोर हो रहे हैं उनके, तो उनको अलसी चाहिए। अलसी एक चम्मच अलसी का आप एक नियम रखो कि आते जाते अपने टेबल के पास रख लो, अपने ऑफिस के ड्रॉअर में एक डब्बी छोटी डब्बी में रख लो, तो एक चम्मच के करीब, चाहे वो बढ़िया रहेगा कि अगर आप उसको हल्का सा भून लें, बहुत ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा, ताकि वो जो उसमें क्रंचीनेस रहती है ना अलसी में वो बनी रहे। तो अलसी और तिल का मिक्सचर बना लो आप उसमें। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने डेली डाइट में, इससे क्या होगा हम अपने आप ही दूर हो जाएंगे इन चीजों से जो है, बिस्किट खा रहे हैं हम नमकीन, मतलब आप एक कभी कभी खाना ठीक है बट एक आप अपने आहार का हिस्सा बनाए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात करी कि एक तो सबसे बड़ी बात है इसमें रिफाइंड होता है, रिफाइंड सीरियल है ना ये, चाहे इसमें मैदा होगा, सफेद चावल जो पॉलिश राइस है वो यूज हो रहा है, ये सारी चीजें, प्लस क्योंकि ये ज्यादा टाइम के लिए रखा जाता है तो इसमें हमेशा नमक या चीनी की मात्रा जो भी होगा प्रोडक्ट वो ज्यादा होगी, तो वो हम फालतू ले रहे हैं, तो उन चीजों को कम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो घर में आप बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं, और ये जो चीजें हमने बताई इनमें कोई बहुत समय नहीं लगने वाला, अंकुरीकरण करके रख दीजिए, एक कटोरी में आप निकाल के अंकुरित अनाज को खा लीजिए, इस तरीके से चीजें, और उसमें विविधता भी आ जाएगी।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, और मैम जैसे कि हम बात करें ना अपने इस पहाड़ी इलाके की, हम वैसे भी पहाड़ी लोग हैं, तो जैसे पहले के समय की अगर हम बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो बहुत चाव से जो है खेती की जाती थी, और चाहे महीने लग जाए तो बहुत मतलब प्यार से एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो काम भी किए जाते थे, और घर की चीजें जो है वो ज्यादा उगाई जाती थी, चाहे वो दालें हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं ना कि हम पैसों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, और ये जो नेचुरल चीजें हैं इन पे हम ध्यान, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम इन्हें खेती कर तो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर का बोझ उतारना, वो वाली चीज जो है हमें आजकल ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो वही पैसों की बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे कमाने के चक्कर में सब्जियों को इंजेक्ट करके जो है वो भी सेल करते हैं, तो वो भी हमारे लिए,
1: तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि इंजेक्ट वाले का तो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो तो कृषि विशेषज्ञ ही पकड़ सकते हैं, लेकिन बाकी ये है कि जो भी सब्जियां फल जो भी आप बाजार से खरीदें, आप उसको जब खाना हो या जैसे भी हमेशा ये रख, जैसे कोविड का समय जब था तो लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग करते थे कि पानी कोसा कर लेते थे, कोसे पानी में नमक डाल देते थे, 1% 0.5 से 1% तक नमक डालते थे, और उसमें 15-20 मिनट सब्जियों को भिगो देते थे, और उससे क्या होता था कि क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि मुनाफा कमाने के लिए लोग बड़ा कुछ करते हैं, इंजेक्शन तो दे ही रहे हैं वो है ही है, उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन यह है कि उसमें यह कर सकते हैं कि जो आपका सोर्स हो जहां से आप लेते हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, थोड़ा हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बोला कि पानी थोड़ा गर्म पानी करके और उसमें नमक डाल दीजिए और उसमें सब्जियों को 10 से 15 मिनट तक रख दीजिए, और फिर उसको निकाल के जाली वाली टोकरी में रखो और फिर आप उसको इस्तेमाल करते रहिए, तो उससे क्या होगा कि जो पेस्टिसाइड उनके ऊपर स्प्रे होते हैं उनका असर भी कम हो जाता है, उनका मतलब निकल जाते हैं।

0: उसके हिसाब से ही कुदरत ने सब्जी और फल का भी मौसम बनाया हुआ है। तो ऑफ सीजन में जाने की जरूरत नहीं है, आप जो आपकी मौसमी फल सब्जी हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी होना बहुत अच्छी रहेगी। इसी तरीके से मोटा अनाज जो भी हमारी एरिया में लगाया जाता है, ठीक है, तो वो जो अनाज है वो उसको हम अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। जैसे बहुत, जैसे सियूल है, बहुत आसान, व्रत में तो हम जरूर खाते हैं सियूल की खीर, तो आप रूटीन में भी सियूल का खीर और रायता बना सकते हैं। अभी सर्दियां आ रही हैं तो उसमें हल्का, जैसे लड्डू होते हैं उसके बने हुए, वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो उनको जब हम उनको लेके ही नहीं आएंगे तो उनको टेस्ट भी नहीं डेवलप होता, पता ही नहीं होता उनको, तो उनको तो बस वो चॉकलेट और जेली ही पता है ना। तो ऐसी चीजों के ऊपर हम, जैसे गचक है, इस तरीके की चीजें हैं, इनके ऊपर हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हेल्दी भी होते हैं और इसमें नट्स होने की वजह से उनकी प्रोटीन की जरूरत है और मिनरल्स हैं, इनकी जरूरत भी पूरी होगी।
1: जी दोस्तों, तो आप सभी ने जाना है कि किस तरह से जो है हमारा खान पान रहता है और अक्सर हम कितना ध्यान देते हैं और नहीं भी देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो देने की जरूरत है, क्योंकि स्वस्थ रहना हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम खुद स्वस्थ होंगे तभी हमारे अपने अपने साथ होंगे, अदरवाइज तो फिर सभी ऐसे मुंह मोड़ते हैं और पीछे से पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, हेल्थ जो है, एक ही बात बोलेंगे कि हेल्थ जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और खान पान अगर हम सही तरीके से करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर हम थोड़ा सा भी खान पान को डिसबैलेंस करते, जिस पैसे कमाने के लिए हम ये खान पान बिगाड़ रहे हैं, अगर वो पैसा हेल्थ के लिए लग जाएगा तो फिर उस कमाने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो मैम, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने खान पान और अपना जो सिस्टम है उसको सही रखें, समय पर जागें, समय पर सोएं, थोड़ा ये रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और जो हमारे जो लोकल खाने हैं, जो भी रेसिपीज भी कह सकते हैं हम, उनको अपनाएं और उनको अपने आहार में शामिल करें, वो हेल्दी भी हैं और लोकल होने की वजह से सबसे बड़ी बात है कि वो फ्रेशली अवेलेबल होंगे, तो उसमें कोई एडिटिव नहीं होगा, कोई जो भी उसको लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन नहीं किया है, तो उसमें जो भी पौष्टिकता होगी वो जेन्युइन होगी, सही होगी। तो लोकल फूड को अपने आहार में शामिल करें और सही खाना खाएं और सही समय पर खाना खाएं।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, तो आज हमने बात की है जीवन शैली आधारित बीमारियों की और कैसे उससे बचा जा सकता है अपने खान पान को सही करके। तो आज की हमारी बातचीत में जुड़े थे डॉक्टर अनुपमा संधल जी। तो दोस्तों, बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश थी और उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश हमारी कामयाब हुई होगी, और नहीं हुई होगी तो धीरे धीरे आप इसे अपने जीवन में जरूर कामयाब करेंगे। तो फिलहाल समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम के नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 476 अंक बढ़कर 72,859, जबकि निफ्टी 132 अंक की वृद्धि के साथ 22,688 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों का आज सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे?
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: मैं कैसी लग रही हूँ?
1: सड़ा हुआ आलू। सड़ा हुआ आलू निकला। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 MHz ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बनी हुई हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 MHz ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर लगाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं। फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनमेश्वर जी हाजिर होई हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारें दा ही स्वागत है। इसी स्वागत कन्ने तुहां जुड़ी होने न कन्ने गलबात जेड़ा तुहां तक अहां ले करी जरूर हाजिर होई हो न कन्ने तुहां भी जेड़ा तुह जो इंतजार रहिंदा है कि कालू दिया दो बजदे न कन्ने कालू दिया तुह सारे ही इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़दे न कन्ने मौसम दी ओर अगर अहां नज़र दौड़ांदे न तां कुत्थी ना कुत्थी मौसम भी जेड़ा अपना बदलाव है से जरूर लैदा है। तो मौसम दे अनुसार चलना भी अहां वास्ते जरूरी है क्योंकि मौसम के अनुसार अहाँ चलते न ताई अहाँ अपने जेड़ा काम कार हैं तिना जो करी पाते न। पहले श्रोता जेड़ा न से अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दिन तिना कन्ने गलबात से कुथू ते बोला दे न कन्ने तिना दा ना के हेलो
1: नमस्कार मरी
0: जी। नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न जी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हाँ ठीक ठाक है ना?
1: ठीक है नमस्ते मैडम जी।
0: जी जी तो हाँ कुथू ते बोला दे कने तो हाँ दा ना क्या है जी?
1: मैं विजय कुमार बोल
0: रहा। जी तो विजय जी क्या हाल चाल है धर्मशाला रे अंदे क्या काम कार छेड़िया मौसम कदे है धर्मशाला ता इस टाइम?
1: मैडम जी मौसम दा इस टाइम बरखा लगने तैयार हुई है
0: जी। बरखा लगने तैयार है कि कुछ जेड़ा बरखा दिया बूंदा न सभी पे ही है की
1: पे ही है भैया मैडम जी?
0: जी जी कहना मौसम दा कोई भरोसा नहीं है ना जी?
1: मैडम जी कोई भरोसा नहीं लगा तो
0: जी जी जी ता विजय जी नोईता जी धर्मशाला थी
1: ए ना मैडम जी बस कम में करा दे अस रोटियां खाने टाइम हो गया
0: जी। अच्छा काम भी करा दे कने उन समय दे अनुसार सारे काम करना जरूरी होंदे ना जी?
1: जी जी मैडम जी बड़ा जरूरी
0: जिना काम करना अहां वास्ते जरूरी है उसी तरीके ने जेड़ा खान पान है सभी जरूरी है ना जी?
1: हां जी मैडम जी।
0: जी कई बार अहां अपने आसपास दिखते न या अपने घरे च ही दिखते न कि काम दे चक्कर च कई बार अहां अपना जेड़ा खाना है से पहले अहां वास्ते काम जरूरी होंदा फिर यहां खाना जेड़ा है से खांदे न तो तुहें क्या लगदा?
1: मैडम जी पहला था अपनी रोटी पहले जरूरी है।
0: जी जी जी पर उस टाइम अहां ऐसी सिचुएशन च होंदे कि अहां सोचदे कि पहले इस काम में जो ही खत्म करी लैन।
1: मैडम जी सारा काम तो कैसा है टाइम नहीं लगदा रोटी खानी।
0: जी
1: जी जी
0: जी जी जी ताई मैं ये गल बोली क्योंकि काम भी ऐसा होंदा कि कई बार अहां जेड़ा चीज सोची होंदी से नहीं होंदी अहां ये सोचदी कि पहले अपना जेड़ा काम है उस जो करी लैन दे ना फिर अहां दे दिमाग च ख्याल होंदा कि नहीं पहले खाना खाई लैन दे ना जी। पर ठीक है काम करना भी जरूरी है से अहां नहीं बोला दे कि काम मत करा क्योंकि काम करना भी जरूरी है पर जितना कि यहाँ वास्ते काम जरूरी है उतना ही यहाँ वास्ते खाना खाना भी जरूरी है क्योंकि
1: रोटी मैडम जी रोटी खाएंगे तो गुजारा चलना है या तो काम नहीं होना।
0: जी क्योंकि सेहत ठीक है तो सारे काम ठीक है ना जी?
1: जी मैडम जी
0: कने सेहत दा वैसे भी आज के दौर दी गल करिए ता सेहत जो अहां जरा के भी नजरअंदाज कर दे ना तो कुछ ना कुछ अहां जो नुकसान जेड़ा न से दिखने जो मिली आंदे ना जी?
1: बिल्कुल मैडम जी बिल्कुल
0: जी। तो इससे अच्छा कि खाना समय के अनुसार खाना कने जेड़ा काम मैं सभी समय के अनुसार करा ना जी?
1: हां जी मैडम जी सेरे काम टाइम के अनुसार चले ना टाइम मेरे गांव टाउन जाके फिर
0: जी जी ना कुदरत दे नियम मान ना जी बरसात आई तो सर्दियां भी आईयां। जी तो उसी प्रकार जिन्ना कुदरत दे नियमां अनुसार अहां भी ढलदे जांदे तो उसी प्रकार अहां जो अपना जेड़ा काम है या अपना जेड़ा स्वास्थ्य है उसका ख्याल रखना भी जरूरी है ना जी?
1: मैडम जी जवानी होंगी ना एक दिन बुढ़ापा भी होगा।
0: जी जी जी
1: जी
0: जी सारे दौर जेड़ा ने से चले रहंदे ना जी?
1: हां जी हां जी बड़ी
0: जी जी। तो विजय जी आज तो हम कुंदिया गीत सुनना है कुंदी फरमाइश है तो हम दी आज
1: आज मारे जी तो हम जो जुमात्रा सुनाई दिया।
0: जी झमाकड़ा सुनना तुह जी जरूर तुंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचांदे जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
1: जी मैडम जी जी
0: तो श्रोताओं तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने श्रोता जेड़ा न से जरूर कॉल करा दे न अगले श्रोता कन्ने भी गलबात कर दे न से कुथु दे रहने वाले न कन्ने तिना दा ना के हेलो
2: हेलो नमस्ते मैडम जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
2: हां जी ठीक ठाक तो सुना
0: जी हां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी जी तो हां अपना नाम दसी दिया कने कोहा जगह दे रहने वाले न सभी जरूर दसी दिया
2: सुकड़े से बोलला दी माया
0: जी सुकड़े से माया जी बोलला दे जी ता माया जी अजकना जेड़ा दिन है से कदिया की गया कदिया की रिया अजकना दिन 2 बजे तक कहां गल करिए ता
2: दिन आज बरखा लगी हो है लगी तो ही हो है
0: जी अच्छा बरखा जेड़ा से लगी पी हो
2: हां
0: जी जी ता धाना दे जेड़ा काम मन से उस साइड पे ही हो कि नहीं है माया जी आज तुह कुंदिया की सुने कुंदे फरमाइश है तुह दी
2: भजन सुनाए जी माता दा
0: जी कुहा कुंदिया भजन सुनने
2: ओ सुना जी माता रानी ज्वाला जो माया आ गई है कांगड़े दे मोड़े मोड़े
0: जी जी जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
2: बड़ा बड़ा धन्यवाद जी साडा
0: जी तो शो तो वहां भी कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से कर देन विजय कुमार जी दी जेड़ा फरमाइश है से यहां तक पहुंची हुए तो इसी गीत के ने यहां आगाज जेड़े से कार्यक्रम दा करा देना

0: ब्याह जिहड़ा है ना से शुरू होई जांदे ना तां कुथी ना कुथी ये जिहड़ा जमाकड़ा गीत है से हर कुसी जो यही बोलता है कि थोड़ा दिया नची लिए थोड़ा दिया मौज मस्ती जिहड़ा है से जरूर करी लिए क्योंकि गल बात अहां जालू कोई भी कर दे ना चाहे से अहां दा गीत संगीत है तिने अहां जो याद आई जांदा है कि गीत संगीत जिहड़ा है से अहां दी जिंदगी च कितनी अहम भूमिका अदा करता है पर अहां इस गीत संगीत जो कुथी ना कुथी भूलते चलियो तो जरूर इहदे उपर गलबात जरूर करनी है पर अगले जिहड़ा श्रोता न से अहां कन्ने जुड़ चुके न कर दें तिना कन्ने गलबात। हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: जी हाँ बस ठीक ठाक। मैंने क्या बोला?
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक हैं जी। जी तो हाँ कुत्तू ते बोला दे कि ने तो हाँ दा ना किया है जी।
1: आप तंगलोटिया ते बोला दे ना रमेश मेरा ना है।
0: जी तंगलोटिया ते बोला दे रमेश जी।
1: हाँ जी।
0: जी तो रमेश जी क्या कामकार छेड़े या तो हाँ क्या कराते?
1: कोई कामकार नहीं छेड़े बरसाती है बड़े बजरे भी।
0: जी अच्छा तंगलोटिया जी रह से बरखा बड़ी जोर ने पियो
1: बड़े बजोरे पी जी।
0: जी ता तंगलोटिया वाली साइड धाना बटने दा काम लगाई पे कि नहीं लगाया आली?
1: मैं भी बड़ी सुत गया बाहर तो आप तो यहाँ पे बाद मकड़े भी कुछ तो फायदा कोई नहीं।
0: जी फायदा कोई नहीं है ना जी।
1: बाहर सुत गया बाहर।
0: जी नुकसान हुई या?
1: हाँ नुकसान तो आराम बंद बाद आम
0: रहा। जी जी
1: जी
0: मौसम दा वैसे भी कोई भरोसा नहीं होंदा ना जी।
1: कोई पता नहीं
0: जी कने वैसे भी जालू दाना बढ़ना लगदे ना तो कुथी ना कुथी मौसम भी परेशान जड़े से हां जो जरूर करता है ना जी।
1: क्या था जी मोने क्या था मैं तुझे तो जी दे ला।
0: जी जी
1: आहा कुछ नहीं लगा दे तुझे तो जी दाना।
0: जी जी तो रमेश जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनने है कुंदे ही फरमाइश है तो हुंदी
1: ओ बाबू सुन के क्या बता सारी तुड़ कर मार दिया।
0: जी कुंदिया
1: बाबू सुन चुप फिर वो बता है कोई?
0: जी जी सरुआ दा साग ता तो हाँ सरुआ दा साग अगर गल छेड़ी दिती है ता बाई त्या तो हाँ जी अच्छा बरखा सागे वास्ते ठीक ठाक हो गई है। जी कुथी ना कुथी बरखा दे पानी दा फायदा भी है कुथी ना कुथी नुकसान भी है। चलो मौसम दा जी जी जी जी जरूर जी जी तो जरूर तुहंदी जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा। तो श्रोताओं अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ांदे ने कने मौसम दी ओर अगर अहां नज़र दौड़ांदे ने तो मौसम कुथी ना कुथी शरारत जिहड़ा है से करा दा है। हल्की गरज कने बारिश जिहड़ा है से जरूर लगी हुई है। तंगलोटिया का जिहड़ा हाल है मौसम का से तुहां सारे सुनी लिया है कि तंगलोटिया वाली साइड जिहड़ा है से बरखा बड़ी ज़्यादा लगी हुई है। धर्मशाला दे जिहड़ा श्रोता जुड़े थे तिथु वाली बरखा जिहड़ा है से नहीं लगी हुई थी। तो जरूर मौसम का थोड़ी थोड़ी जिहड़ा हाँ बोली सकते कि बदलाव जिहड़ा है से जरूर रहिंदा है। कने तापमान की गल करिए वर्तमान का जिहड़ा तापमान है से 17 डिग्री सेल्सियस है। कने इसी कने जिहड़ा हवा च नमी का जिहड़ा स्तर है से 70% है। तो जरूर मौसम के अनुसार तुहां सारे अपने जिहड़ा काम मन से जरूर करने न। कने इसी कने अहां भी तुहांदा जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखने कने अगली फरमाइश की ओर तुहांजो लेकर चलते न। ये फरमाइश अहां पहुँचा देन माया जी तक।

हाँ बोला देने रेडियो गुंचन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कने। इसी कने समय दी ओर नज़र दौड़ान देने तो 2:24 कार्यक्रम जो या न कने तो हाँ सारे भी कार्यक्रम दे सफर च समय दे अनुसार जुड़ी सकते। जुड़ने वास्ते जिहड़ा स्टूडियो दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाई देना, नंबर है 7018117091। नंबर तुहां तक पहुँचाई दा है कने बाकी जिहड़ा काम है से तुहां दा है, क्योंकि समय दे अनुसार चलना अहां वास्ते जरूरी है। जैसे कोई भी काम है जिंदगी च, अहां कोई भी काम करा देना समय के अनुसार।

0: हर काम वास्ते जरूरी है। अपनी सेहत का जिहड़ा ख्याल है सभी रखना जरूरी है, क्योंकि सेहत पर अहां बार बार जिहड़ा गलबात है से करते रहते हैं, क्योंकि सेहत ही अहां वास्ते एक जिहड़ा अहां बोली सकते अनमोल उपहार है। सेहत बिना तो कुछ भी नहीं है। सेहत थोड़ी देर भी अहां दी अहां जो कुछ दस्तक देना शुरू करी दी है तो अहां दी जिहड़ा जिंदगी का जिहड़ा सफर है ना से थोड़ा जिहा अधूरापन जिहड़ा इसे लगना शुरू हो जांदा है। ते इसी कन्ने अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कन्ने करदे न गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। जी तुहां अपने रेडियो सेट दी आवाज कम करी लेंगे जी?
1: हां जी हां जी
0: जी जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा नां की है जी?
1: आ ता टंग नरवाणा ते बोलदे जी, नां साडा बबलू।
0: टंग नरवाणा ते बोला दे बबलू जी?
1: हां जी हां जी
0: जी। ता बबलू जी, क्या काम कार तुहां छेड़िया, क्या करा दे आज?
1: कामकार क्या बरखा लगी है जोर है करे कोई कामकार नहीं
0: जी। अच्छा, टंग नरवाणे दी गल करिए ता उस साइड भी बरखा जेड़ा है से जोरदार लगी हुए?
1: बिल्कुल, बड़ी बड़ी जोरदार बरखा
0: जी जी। ता जेड़ा धाना दे काम उस साइड भी पे ही हो कि नहीं पे वाली?
1: बिल्कुल जी
0: जी। अच्छा, पे ही हो कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने गल बात जेड़ा करा दे थे से करा दे थे सेहत उपर। सेहत दा जेड़ा ख्याल है से रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे से कोई भी अहाँ काम कर देना, काम करना भी ज़रूरी है, पर अहाँ अपनी जेड़ा जिंदगी है ना, जिंदगी दा जेड़ा सफ़र है, ठीक है, सफ़र हर पल अहाँ जो इंजॉय करना भी ज़रूरी है, पर अपनी अहाँ सेहत का जिहड़ा ख्याल है से किस तरीके ने रखा दे, या अहाँ का जिहड़ा खान पान है से किस तरीके ने है, क्योंकि खान पान जिहड़ा है से अहाँ का पूरा ही अहाँ बोली सकते कि बदलुई है, या ज़्यादा जिहड़ा तला भुन्या खाना है से खाना अहाँ ज़्यादा पसंद करते न, पसंद तो अहाँ करते न, अहाँ अपनी जिहड़ा जीव दा जिहड़ा स्वाद है उस जो दिखदे न, पर उस दे चक्कर च अहां कुथी ना कुथी अपनी सेहत जो नज़रअंदाज करना जिहड़ा है से शुरू करी दे न। जलो अहां सेहत जो नज़रअंदाज करदे न तो फिर ही जिहड़ा सेहत है से अहां जो नज़रअंदाज करना शुरू करी दी है, क्योंकि हर चीज़ दा समय होंदा, समय दे अनुसार हर चीज़ अच्छी लगती, कने से चीज़ अगर लिमिट ते ज़्यादा हुई है तो से कुथी ना कुथी अहाँ जो नुकसान जिहड़ा है से देना शुरू करी दी है। तो इसी कन्ने तुहां अपना जिहड़ा ख्याल है सभी रखना है, कने अपने दा जिहड़ा ख्याल है सभी जरूर रखना है। एक गल अगर अहाँ ये करिए कि अहाँ कई बार ज़्यादा टेंशन तनाव च रहते न तो सभी अहाँ दे स्वास्थ्य पर जिहड़ा है से बुरा असर जिहड़ा है से दीदी वजह ने भी पौंदा है, तो जरूर इसी कन्ने अहां फ्री से थोड़ा दे आगे बढ़ते न, कन्ने तो जो गीत और लेकर चलते न, क्योंकि थोड़ा दे जिहड़ा तनाव है या टेंशन है उस जो दूर भगांदे न, क्योंकि कुथी ना कुथी ये जिहड़ा गीत संगीत हैं अहां दी टेंशन जो दूर जिहड़ा है से जरूर भगाने चाहंदी मदद जिहड़ा है से करदे न।

तो तुम तो सारे सुनिया एक गीत फरमाइश। ये फरमाइश अह तक पहुंची होवे व्हाट्सएप के माध्यम ने। तिना दा नाम है सुनील कुमार जी। तिना जो मेरी तरफ ते नमस्ते कने तिना तक अहां ये फरमाइश जड़े से पहुंचाई है कने से रहने वाले न कोठियां जलोट ते। तो ज़रूर तिना दा ये प्यारा दिया भजन बड़ा ही प्यारा है। जिंदगी चाह अगर अहां आयो न तो हमेशा अच्छे जड़ा कर्म अन से अहां जो करना चाहिए। अच्छे कर्म क्या अहां करी सकते, क्योंकि हर दिन अहां दी जिंदगी च कोई ना कोई उतार चढ़ाव जड़ा न से चलियो रहिंदे। पर अहां पूरे दिन च क्या अच्छा काम करदे न, क्या अहां नकारात्मक चीज़ां ते जड़ा है से बचते न, क्योंकि अच्छा काम करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अहां दे जड़ा विचार है ना से अहां पर निर्भर करता है कि अहां किस तरीके ने अपने जड़ा विचार हैं से रखते न, या किस तरीके ने अहां कुसी दी जड़ा मदद जड़ा है से करते न। क्योंकि कोई भी जिंदगी दा मोड है से अहां जो ज़रूर मौका जड़ा है से दिंदा है, पर अहां किस तरीके ने कुसी दी मदद कर देन या उस चीज़ का फायदा लैन देन या कुछ भी है। क्योंकि जिंदगी जड़ा है से अहां जो बड़े सारे सबक जड़ा है से ज़रूर देख करी जाती है। सबक अहां जो मिलना जड़ा है से शुरू हो जाते हैं कने तिना ही सबका ते अहां कुछ ना कुछ जड़ा है से ज़रूर सीखते न, मेहनत भी करते न, मेहनत करी करी अपने जड़ा काम मन तिना जो ज़रूर हासिल जड़ा है से करते न। इसी कने तो सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहां कने जुड़ी सकते कने अहां कने गलबात जरूर करी सकते। तो तो छोटी दे कहानी है से जरूर मैं तुहां तक पहुंचानी है। पेंसिल कने रबर दी कहानी है। अक्सर तुहां पेंसिल जड़ा है से जो अपने काम च जड़ा है से यूज़ करते न, इस्तेमाल जड़ा है से ज़रूर करते न। एक पेंसिल कने एक जड़ा रबड़ है से आपस च दोस्त थे, दोस्ती मन्ना, क्योंकि पेंसिल ने यहाँ लिख दे न कने रबड़ दी यहाँ गल करिए ता रबड़ ने यहाँ जड़ा गलती की थी वह उस जो मिटाई दे न, रेजर जड़ा है से ज़रूर करी दे न। तो पेंसिल जड़ा है से रोज़ गलती करती है कने रबड़ जड़ा है से उस जो रोज़ जड़ा है से मिटाद है। तो रबड़ जड़ा है से मुस्कुरादा है कने से बोलता है कि पेंसिल जो बोलता है कि तू तो रोज़ गलती करती है कने मैं रोज़ जड़ा है से तीजो जड़ा है से मिटाइंदा है। तो इसी कने जड़ा सवाल जवाब जड़ा है से तिना दे आपस चले रहते न कने इसी कने रबड़ जड़ा है से एक दिन यानी कि ये सोचता है कि मैं जड़ा है से ख़त्म हो जाना है। पर रबड़ जड़ा है से मुस्कुराई करी बोलता है कि अगर गलती सुधारने च मैं अगर तेरी मदद करी पाँ तो मैं फिर जड़ा है से कुथी ना कुथी तेरा कम है जड़ा है से आई सकता है। तहां जो ये जड़ा सीख है से मिलती है कि गलती करने वाला जड़ा

ऐसे बड़ा नहीं है जिहड़ा अहां जो सुधारने चाहंदी मदद करता है या अहां जो मौका दिंदा है से अहां वास्ते सबसे बड़ा महान जिहड़ा व्यक्ति है। कई बार होंदा ना कि अहां अपने जीवन च बड़ियां सारियां जिहड़ा गलतियां न से करदे न, कने गलतियां करी करी करी अहां जिहड़ा है से सीखदे न, पर कई बार अहां ये सोचते हैं कि नहीं अहां ये गलती की है तो अहां तो दोबारा जिहड़ा है से काम नहीं होना है या अहां फिर ते गलती करनी है, पर अहां ये नहीं सोचते कि अहां गलती करा दे तो अहां वह चीज़ से जरूर कुछ ना कुछ जिहड़ा है से सिखा देना। तो इसी कने अहां फिर ते थोड़ा दे आगे बढ़ देना, कने तो हम जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चल देना। ये फरमाइश तो अहां तक पहुँचा देना, ये फरमाइश अहां तक पहुँची हो वह टंग नरवाणा ते कने तीना दा नाव है बबलू जी, तो जरूर बबलू जी तक अहां ये गीत फरमाइश पहुँचा देना, तुम सारे भी इंजॉय करा।

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि करने कार्यक्रम दा जेड़ा समय तुह तक रहता है से रहता है दो ते तीन बजे तक कने इसी कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते कने हाँ कने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते गलबात करने वास्ते जेड़ा हंदा नंबर है से फ्री ते एक बारी तुह तक पहुँचाई दे ना तुह सारी नंबर जेड़ा है से जरूर नोट करा नंबर है 7081817091 नंबर तुह तक पहुँचाई ते कने इसी कने अहा फ्री ते अगे बढ़ते न अगली जेड़ा फरमाइश है से अहा तक पहुँची होवे व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाम है मनीष कुमार जी तो जरूर तिना तक अहा ये गीत पहुँचा देना तुह सारी भी इंजॉय करा

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने कार्यक्रम था जिड़ा सफर है माटी दी महक कार्यक्रम तो हाँ तक चले है कने तो हाँ सारे अपने जिड़ा काम कार है सभी जरूर करा दे उन्हें न कने इसी कन्ने हाँ फ्री थे अगे बढ़ देना समय दे अनुसार क्योंकि समय के अनुसार जिड़ा तो हुंदियां फरमाइशां सभी तो तक पहुँचाना जरूरी है। तो समय जिड़ा है सियाहां जो बार बार क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर मेरे ऊपर भी नज़र जिड़ा है से दौड़ा समय का जिड़ा पता ही नहीं चलता है कलू समय जिड़ा है से निकलता जाता है कने समय के अनुसार ही यहाँ अपने जिड़ा ख्याल या अपनी सेहत का जिड़ा ध्यान है से रखते न तो कुछ ही ना कुछ ही हाँ हर चीज़ का जिड़ा ध्यान है से रखी पाते न तो जरूर इकी तुह तक पहुँचा देना।

श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने श्रोताओं गलबात करिए जिहड़ा जिंदगी दे जिहड़ा उतार चढ़ाव ना से हमेशा चले रहिंदे न तां कुत्थी ना कुत्थी आंदा जिहड़ा कंप्यूटर है सभी आहां जो उतार चढ़ाव जिहड़े से दे दे तां जरूर आहां फिरी ते वापिस जिहड़े से अपनी गलबात उपर आई हो ना क्योंकि गलबात भी जरूरी है कन्नै जिहड़ा गीत संगीत है सभी जरूरी है क्योंकि गीत संगीत जिहड़ा से तुहां तक अहां पहुँचांदे न जिहड़ा तुहां दियां प्यारियां प्यारियां फरमाइशां न से जरूर तुहां तक पहुँचांदे न कन्नै सी कन्नै गलबात जिहड़ा से भी तुहां तक जरूर अहां पहुँचांदे न ते इसी कन्नै जिहड़ा गीत संगीत दा पिटार है सभी जरूर तुहां तक पहुँचाना है पर थोड़ा जिहा जिहड़ा इंतजार है से तुहां जो जरूर करना पड़ना है क्योंकि इंतजार दी जिहड़ा घड़ी है से हर कुसी वास्ते जरूर क्या होंदी लंबी होंदी पर अहां भी थोड़ा जिहा अग्गे बढ़दे न कन्नै अगली जिहड़ा फरमाइश अगला जिहड़ा गीत है से जरूर तुहां तक पहुँचाना है ते इसी कन्नै चलदे न कन्नै अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देना तुहां सारे भी इंजॉय करा कन्नै सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं तुम सारे ये गीत इंजॉय किया करने हाँ फिर ते वापिस तुह तक पुजी हो कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम का जोड़ा सफर है उसको जरूर इंजॉय करा दे उन्हें इसी सफर जो हाँ फिर ते अगे बढ़ाते हैं कने गीत हाँ पहुँचा देन रमेश जी तक से रहने वाले न तंगलोटिया ते तो जरूर तुह सारे भी इंजॉय करा।

కానీ దశమిల టోమిగా హర్ట్స్ పర్ ఏ దోహ సారనా రేడియో గుంచన్ ధర్మశాల तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो शशि कन्ने दर्शोताओं फिर ते हाँ वापिस आईन गलबात उपर कने समय जड़ा है से जरूर थोड़ा दिया है तो समय के अनुसार चलना भी जरूरी है क्योंकि समय जड़ा है से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका जड़ा है से अदा करता है कने समय के अनुसार अगर चल देन ताई अहां अपने जड़ा काम मन से करी पांदे न कने श्रोता जेड़ा न से जरूर आहां जो मैसेज करा दे न कि जेड़ा फरमाइश है से तिना तक आहां पहुंचान जरूर आहां भी कोशिश जेड़ा है से जरूर कर दे न कि जितने भी श्रोता न तिना दिया फरमाइशा जेड़ा न से आहां तिना तक पहुंचान पर समय जेड़ा है से आहां जो ये बोलता है कि समय के अनुसार चलना भी जरूरी है क्योंकि समय च जेड़ा समय की अगर अहां गल करिए तो दो मिनटा जेड़ा न सियाहल बचियां न तो समय के अनुसार चल देन कने तुहां तक अगली जेड़ा फरमाइश है अगली फरमाइश ते जेड़ा दो बोल हैं से जरूर तुहां तक पहुंचान देन।

कानू दशमलव धोमी का हर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दी थे अपनी रेडियो दो शशी कहने तैसी कहने तो हाँ सारे जी पता है कि कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुह तक रेंद है 2 से 3 बजे तक तैसी कहने तो हाँ सारे अपनी रेडियो दो शशि जुदेया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूंगा सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत गैर लज्जा है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

291.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

स्वागत है जी सभी हुड़ने वाले रा। हम सचिन कपूर हाजिर हो चुके कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा लेकर। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन सभी हुड़ने वाले रा, सभी श्रोतागण रा। क्या हाल चाल ने तुंदे? उम्मीद कर दें कि तुंदे हाल चाल ठीक बुने, तो सब भी खरे बुने हिन। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हेवीडी गुंजन धर्मशाला। और बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन सभी हुड़ने वाले रा, सभी श्रोतागण रा। ता श्रोतों, कार्यक्रम जो बिल्कुल असु आगो बढ़ाना हाँ धर्मशाला रा मौसम की असु बिल्कुल असु जानी लेना श्रोतों, और तथों बाद अन्य जानकारी के ना सो भी तुस हो गया सो शेयर किया सो करी लेनी हिन। तो इस कार्यक्रम मंच बनने वास्ते तो है सब कॉल करी सकते हैं ना 7081887091 पर। नंबर आक मुके फेरे 7081887091 पर तो है सब श्रोता कॉल करी सकते हैं और कॉल करी करे अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं। इस समय श्रोताओं 17 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो धर्मशाला रा मौसम बन रहा है। और न मेरी गल करूँ तो 80% रे आसपास किया सोना में बन रही है श्रोताओं। तो यह इस समय धर्मशाला रा मौसम तो सब हूँ कर दिन और बन रहे हैं आर जे सचिन कपूर सोगे। तो धर्मशाला रा मौसम जो है तो सोगे बयां करो अश्रोतों, और इसी सोगे तुंदी फरमाइश है ना सो जरूर पूरी कर ले। बल देने की ख्वाहिश रा जो काफिला सो भी बड़ा जालिम बुंदा हा, अक्सर तड़ी थों ही गुजरदा जड़ी के न सो ख्वाहिशा पूरी ना बुझी सकती है ना। तिन्या ख्वाहिशा मंझ किया सो अक्सर मन लगदा, और सोई ख्वाहिशा अक्सर दिल किया सो बलदा हा करदा हा कि सो ख्वाहिशा कदी पूरी बुझी ना सकती हिन। तो जिंदगी में जो मुड़ो जितना मुड़ो तती में खुश रहना भी अक दस्तूर की सो बनी गंदा हा शो तुम खुश जरूर रहो करा। बहरहाल कार्यक्रम मिंदी अपनी गप गैन सो भरपूर चल रही तुंदे वीडियो सेट में, और कार्यक्रम में जुड़ी सकते हैं जनाब 7081887091 पर। नंबर आक मुगे फिर हम शेयर करनो हाँ 7081887091 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं, अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो सांझा कर सकते हैं। यह गल खास ख्याल रहे श्रोतों की जानकारी की सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर भुआ, जानकारी किया सो रेडियो मंच सांझा करने लायक जरूर भुआ। ये कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं और लेकर चलते तू सभी जो इस गीत तरीके नारी बनी रही है जुड़ी रही है इस इवेंट के हम भजन बलना चाहते इस भजन तरीके नारी।

0: श्रोताओं, एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ और कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा कहने सो चल रही था। चलिए जी इंदे श्रोतागन असोगी बिल्कुल कनेक्टेड हिन पूछ दिन कुन बल्लू कर दिन और कड़ी थम बल्लू कर दिन। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। वीडियो सेट रही आवाज धीमे करी दे आस्ते करी दे बिल्कुल है ना जी। कुछ नहीं होने कर दस वो की तो है क्या वालू कर देन। हाँ जी हूँ अब हमने करता है वीडियो सेट तो थोड़ी करी दूँ। अच्छा जी क्या ना जी तुंदा।
1: मेरा नाम गोमती ना जी सुनिए ना।
0: हाँ जी
1: हाँ जी तो क्या राम का बलेगा आया बुद्धि जगा बन जा खड़ी
0: राम जपले है ना जी।
1: हाँ जी राम का बुलावा या बुद्धि जगा बन जा खड़ी।
0: ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद।
1: और
0: राम जपले जरूर होने ले राम जपले ये गीत और बाकी मैं राम जपना चाहता। श्रोताओं आइए जी कुछ एक जानकारी रही और की सो तुस वो लेकर चलते हैं और जानकारी कुछ एक शेयर करते हैं। तो सोगी धर्मशाला स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट रोड किनारे बिछाई छूरे श्रोतों भूमिगत बिजली केबल थों विद्युत आपूर्ति शुरू होने थो अल्ली कुछ समय और के ऐसो लगना हा शतो। विद्युत बोर्ड है कि ऐसो केवल बिछाने रा काम पूरा कर लियो हा शतो लेकिन जो जो जोड़ जोड़ा भूना हा शतो सो जो तकनीक जो तकनीकी बिंदु हिन या वह समाधान भूना हल्ले बाकी हा। इन समस्या जो दूर होने थो बाद ही केवल केबल की पूरी तरह थों जांच शुरू होने हाँ शो थों स्मार्ट रोड रहते हैं ते शिक्षा बोर्ड कार्यालय थों लेकर बस स्टैंड तक विद्युत लाइन जो कि असो भूमिगत भूआ हाँ शो थों और स्मार्ट सिटी वे मतलब कुल मराए गए दस नकी हल्ले की आशो थों सो कम अधूरा हा पूरा बोना हा हले ता इसी सोगी जानकारी जो हगो बढ़ते हैं और तो सब श्रोता सोगी जुड़ सकते हैं 708-8-709 आग पर नंबर आग मौके फिर हम शेयर करना हाँ 708-8-709 आग पर इसी सोगी श्रोतों इसी सोगी श्रोतों अक प्यारी दे स्टोरी किया सो बिल्कुल लेकर ही हाजिर लगो हबूना है ना जी। लेकिन जी ये भी बहुत हो तो है ना कप्यारी दे स्टोरी की सतुन दे वीडियो सेट मासु जरूर ब्रॉडकास्ट के सो करने बंदे है शो तो सब कॉल कर सकते हैं ना 708-8-709 आक पर नंबर आक मौके फिर 708-8-709 आक पर तो है कॉल कर सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं श्रोताओं और लेकर चलते हैं तो सब भी श्रोता जो कार्यक्रम मंच और इस गीत सोगी की असो रूबरू करवाते हैं बने रहा जुड़ी रहा और इं ही होते रहा तुंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। चलिए लेके चलते हैं और आनंद लेंदन इस गीत तरह

0: शोधो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहने सब बिल्कुल लाइव चल रही है। अगर प्यारी दे स्टोरी श्रोतों जी अक्सर है लेकर इंदे ने सो स्टोरी है फिर लेकर आए हैं और हाजिर बिल्कुल बुझ गया हिंद जनाब सो स्टोरी लेकर है तो कोशिश इंदी भरपूर रेंदिया और रेंदिया की इंदे श्रोता कहन सो ज़रूर स्टोरी थो रूबरू भून है ना ऐसा कुछ है ऐसी है कुछ कोशिश किया सो अक्सर कर दे हैं श्रोताओं ता मेरा नाम सचिन कपूर है और आइए जी लेके चल दें तुसमो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के नो तो है हूँ करते हैं इन तो अक्सर यह स्टोरी के अनसो तुस तक साझा करते हैं अपने इस लाइव कार्यक्रम में तो श्रोतों बोलते हैं कि अगर जिंदगी में और जिंदगी की किताब में कि इस ज़्यादा फर्क नहीं इतना करे फर्क है और रिश्ते मंज है ना जिंदगी में जो रिश्ते बनते हैं इनते किताब अगर खरीब होना तो सो किताब है बाखूबी पढ़ देन किताब में अगर अकद पन्ना किया सो खराब हो जाएगा छा या अकद पन्ना किया सो मिस हो जाएगा छा तो है तस पन्ने जो किया सो साइड में किया सो रख ही देन तो जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही बुंदा हाश होता हूँ अगर रिश्ते खरे चल रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है और बेहतरीन हा और कदी लगा कि रिश्ते मंच किया सो लड़ाई झगड़ा बुझगो बैस बाजे की असो बुझगी हा या उतार चढ़ाव के अनसो चलिया इन तो तस इन्हें पन्ने जो किया सो डिलीट कर ही देना चाहिए तस इन्हें पन्ने जो किया सो फाड़ी लेना चाहिए हा श्रोतों और सो पूरी किताब किया सो एज इट इज़ रखी लेना चाहिए यानी कि पूरी किताब किया सो तिया ही रखी लेना चाहिए हा संभाले करे सो पूरा रिश्ता किया सो संभाले करे रखी लेना चाहिए हा श्रोतों एक कहानी है श्रोतों एक परिवार रे जिस परिवार में किया सो एक पिता और एक सा पिता रे अलकिनी बच्ची और वाइफ और परिवार रे बूढ़े माँ बाप के ने सो तस परिवार में थी है अबे यारा परिवार की सो थोड़ा करी गरीबी हालती मके असो जूझू करता तो है ना ये बच्चे अक्सर दुआ कर दी थी कि मेरे फादर साहब के सो खरा पैसा कमान खरा इन्यो खरी नौकरी की असो इन्यो मुड़े गच्छा और इंदा भी रहना सहना किया सो बाकी जी मेरी दोस्त हैं तिया ही है कि असो इंदा भी रहना सहना किया सो बच्चे गच्छा है ना अक्सर की असो प्रार्थना कर दी थी उपराले थे और जो कि बच्चे थे तो फादर साहब हमेशा बलदा तो कि वो पहाड़ी मंच किया इस पहाड़ी पिछों भगवान रहा तो यी प्रार्थना करनी सो मुड़े गंदा सो है पाई लेंदे हैं अक्सर इस प्रकार की प्रार्थना रहती थी और ये प्रार्थना करते भी थे ऐसा हुआ कि प्रार्थना की सो स्वीकार बुझगी और इस पिता ने नौकरी किया यानी कि तस कुड़ी रे फादर साहब ने नौकरी किया सो सेना में लगी गई श्रोतों जी सेना में लगी श्रोतों तो ये सब बड़े खुश हुए और कुछ महीने बाद किया सो लड़ाई लगी पे श्रोतों अब इन्या किया सो पहाड़ सो चढ़ना तो और पता तो कि अगली साइड की सो दुई सीमा हा है ना दुआ देश हा और ये पहाड़ जो चढ़ना लगे और यह आक चिट्ठी किया सो लिखी करे अपने पिता सीधी रे हथ किया सो दे देते और बोलू कि ये तो है भगवान ना जो कि असो दीन है अभी बड़ा हैरान तू बड़ा परेशान तू कि हूँ कड़ी भगवान ना जो दिला है ना और यह चिट्ठी अंदर कह लिखुरत हो सो तू है जरूर दस ले लेकिन इन्हीं भी बच्ची रा मन रखने वास्ते कि सो चिट्ठी ले ली और ये टुकड़े की असो लड़ाई वास्ते चले पेशो तो महा भीषण युद्ध किया सो भूआ शो तो बहुत तेज तरार युद्ध हुआ और इस टुकड़ी रे बहुत सारे सैनिक के ना सो शहीद बुझ गए अब शहीद बुझ गए और एक कुछ टाइम वास्ते थोड़ी थल्ला जो आ है ना और इन्हें तह चिट्ठियाँ लिखी था कि बेटा सॉरी भगवान ना बुंदेन और आऊँ तो तेरा मन रखने वास्ते बंदा थो कि यह पहाड़ी मंज भगवान हैं और ये डाकियो मतलब डाकखाने में किया सो दी दिंदा थो कसकियो बल्ले करे तब हों कि बद अंदर चली गए बड़ा लड़ाई बुंदे त्राई चूर महीने और इं जो भी खबर मुड़ी गए कि भाई सो टुकड़ी वे सब सैनिक हैं सो शहीद बुच गए मारे गए हैं। तो यारे घरे बड़े मातम रहा माहौल बुंदा हा है ना परिवार रहा अक अकियाँ नकियाँ बच्चा तो सो कमाना लगता और सो शहीद बुच गंदा हा। ता कुछ टाइम बाद गया सो पिता गया सो घर जो चलींदा हा बड़ी मतलब तस हालती माँ फटरी हालती माँ है ना इन लगुंदा तो कई महीने थों किया सो भरुकना बड़ी हालत गंभीर थे। और जी पिता इंदा थी बेटी हो गई मिलदा परिवार अस हो गए सब भी हो गए मिलदा हा। और फिर जी मिलदा हा शो तो उनते हाँ इसी हो गया असो बड़ा अच्छा लगता हा इतने महीने बाद अपने परिवार अस हो गए मिलने वा। तथों बाद कुछ टाइम बाद गया सो डाकिया भी चली इंदा शो तो तट्ठी और डाकिया गया सो चिट्ठी दिंदा इं और इं बंदा माफ़ करा ऊपर लड़ाई थी तठेरी वजह है चिट्ठी तुसु तक ना पहुँचा सके थी। और सो चिट्ठी किया सो चिट्ठी खोलदा और ये अप्पू खोलदा और इतियाँ जो कुड़िए लिखुरो बुंदा सेरी है सो लिखुरो बुंदा हा कि हे भगवान तो है मेरे पिता रा ख्याल किया सो जरूर रखें और मेरे पिता जो सही सलामत वापस किया सो घर भेजिए। जी बिल्कुल छोतों ये छोटी दे स्टोरी है लेकिन ये छोटी दे स्टोरी है सो ये सिखाते हैं कि विश्वास किया सो बहुत जरूरी है आस्था रहा विश्वास बड़ा जरूरी है रिश्ते मंज विश्वास बड़ा जरूरी है और इस विश्वास जो कायम किया सो रखना भी बहुत जरूरी है। ता हर कोई रिश्ता किया सो विश्वास सोगे चलता है आस्था सोगे चलता है भगवान हिन हर जगह हिन सिर्फ आस्था रखा तो है और भगवान ना गोगिया सो प्रे करा भगवान ना थों जो मंगदे सो मुलदा है और भगवान हर कसीरी रू माँ किया सो भगवान हिन बस सो रू किया सो अच्छी बुना चिंदी सच्ची बुना चिंदी और सही किया सो भूना चिंदी कदी कसीरा बुरा मत करा सो तो हर कसीरा भला जरूर करा। बहरहाल इन दे अगले श्रोतागण के सो असोगे कनेक्टेड हिन पुछ दिन कौन बोलूँ दिन और कड़ी थों बोलूँ दिन नमस्ते जी। हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी कौन बोलूँ दिन और कड़ी थों बोलूँ दिन
1: सुनील कुमार बोलूँ दा मड़ा हूँ।
0: अच्छा ठीक ठाक ने जी।
1: हाँ जी
0: क्या नोई ताजे या
1: नोई ताजे के बरखा लग रही है और अच्छा। कुछ ना ना आता
0: जा चलो पर खाई नौ ताजे पूछेगी
1: देखो ना ना ना लेवर दे बड़ी तेज आ
0: चलो ये नौ ताजे पूछेगी और क्या करना है कौन दिन की
1: गाना
0: जी जी बल्ला
1: गाना होना किन्न बड़ा उस्ताद।
0: अच्छा ठीक है जी जरूर होने ले
1: धन्यवाद
0: जी धन्यवाद। श्रोतों अगले श्रोता इंदे कनेक्टेड हैं नमस्ते जी।
2: नमस्ते सर जी नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक ने
2: हाँ जी सर जी ठीक ठाक सर जी तो सा ठीक ठाक ने सर जी
0: बढ़िया जी तुंदा आशीर्वाद आ
2: चलो बुजुर्ग ना रहना चाहिए सर जी ऊपर आड़े दे रहना चाहिए भोलेनाथ जी दा
0: बिल्कुल बिल्कुल जनाब
2: हाँ जी सर जी
0: जी जनाब कौन देने की थोड़ा पसंद कर ले
2: एक पुराने सिंगर दा ना मतलब गाना सुनना मंजू चिश्ती आवाज जैसे गाना सुनना सर जी
0: क्या बात है मंजू चिश्ती जी
2: हाँ जी ये आया वो बसोवा माए पंजा वो सत्य
0: बसो
2: हाँ जी सर जी
0: चला ठीक है जी जरूर सुन ले तुस वो है ना जी
2: धन्यवाद सर जी नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते तशो तो अब फरमाइश रहा दौर किया सो ज़रूर पूरा कर दें और कार्यक्रम मंज चलिए राम जप जप ले है ना राम रा ना किया सो लेना बहुत ज़रूरी है आइया लंदन और तो सब ने समय एफएम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और रहा हूँ सचिन कपूर है इस वक्त आइए कार्यक्रम जो हागू बड़ंदन श्रोता हूँ और लेके चलते तो सभी जो कार्यक्रम में इस भजनारी किनारी

शोतो एफ एम बैंड के अनुदिशमलब दो मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्म चला तो है सभी ट्यून के रोर। वाकई में श्रोतों इस गीता में बड़े अच्छा है कि यह चुगली लंदन है ना। हकीकत है ना कि यह कसकिरी भी चुगली के ना सो जरूर लंदन मैंजर के ना सो जरूर पंदन द्रिका सरिका रब हुआ पड़ोसी रब हुआ एरोरा रब हुआ घरा रब हुआ कसी रब हुआ है इस प्रकार रिची जगह सो जरूर कर दें। लेकिन भगवान नारा ना लैने हो कि असू टाइम ना बुंदा है ना ऐसे सुने रे तोड़ के आसो जरूर कर दें सर रहना ले करे फोन हेरने रे कि आसो जरूर तोड़ कर दें लेकिन भगवान रा ना किया सो लैने रहा सुला टाइम ना बंदा हा ऐसे गप्पा मारने वास्ते सुले बड़े बड़े टाइम बंदा हा घूमने फिरने रा बड़े बड़े टाइम बंदा हा अपने कम्मा करने रा गया सो बड़े बड़े असूले के सो टाइम बंदा हा लेकिन असूले ये टाइम ना बंदा गया है भगवान रा ना के सो दुई घड़ी ले लैन है ना। खासकर जितनी भी महिलाएं गए ना सो घर रहन या वर्किंग बंदिन या पुरुष वर्किंग बंदे हैं तो आऊँ ये बोलना चाहता हा शो तो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना भगवान रा ना लेना। इस स्टोरी भी तो यह सिखू स्टोरी मंच भी कि अगर सेरा साथ बुला तो सब कुछ हो सकता है उपराले वह साथ बुलाना तो सब चीज़ अगेन सो सरल बुझगंदी आसान बुझगंदी और रिश्ते मंज भी हैं बंदा शोतों की किताब रा अगर पन्ना के असो खराब बुझगछ ना तो सो पन्ना के असो फाड़ी देना चाहता है या कड्डी लेना चाहता है लेकिन सो पूरी किताब ना फाड़ दें रिश्ते मंज बिहाशो तो अगर कदी रिश्ते में उतार चढ़ाव या टकराव चलीन या फिर लड़ाई झगड़ा बुझगछा तो सो वाला पोर्शन के सो डिलीट करी करी रिश्ते जो हगूँ बढ़ाना चाहता है निभाना चाहता है और भगवान रा ना के सो लेना चाहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेरी बजा था क्या सो सब कुछ है शो तो सेरी बदौलत ही किया सो सब कुछ है। बहरहाल लेकर चलते तो सब भी जो कार्यक्रम इसकी तरह किनारे

0: शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो रहा हूँ सचिन कपूर हा बरहल कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदन शो तो और इंदे अगले श्रोता गण सो असोगी कनेक्टेड हिन वेट वेट कनेक्ट कर देना है। नमस्ते जी।
1: नमस्कार भाजी, क्या हाल चाल
0: है? बहुत बढ़िया
1: प्रोग्राम चंद्रा था मेरे भाई साहब कर लेंगे कल 2 मिनट
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल बड़ा मतलब बिजली
0: शो तो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर है वेड़ी गुंजन और सचिन कपूर राव बिल्कुल कनेक्टेड इन द कनेक्टेड हैं इन द शो था। नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी जी, कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलू कर देने?
1: सर प्रवीण कुमार बोलू कर दे द्रवाल लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ जी द्रवाल लेता हूँ बोलू करता।
0: अच्छा
1: बड़ा अच्छा प्रोग्राम सर सुंदर
0: जी।
1: बिजली बोर्ड बिजली बोड़ा जॉब करता था 4 बज गए सर तक खंबे खुंबे तो उतर गया तुम प्रोग्राम सुनना पैंता था
0: तो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में छिन।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल लाइन में आना। जी हाँ जी।
0: क्या बात है क्या बात है, मतलब सभी रे घर जो प्रकाशित जो कर देन सो तो है ना ना जी। हेलो।
1: हाँ जी सर। हाँ जी।
0: मैं कह सभी वे घर अंदर जो रोशनी कर देन सो तो है इन।
1: चलो सर बड़े बड़े मेहरबानी सर तुम भाईचारे की कृपा तो।
0: चलिए बहुत अच्छी गल।
1: मेरा ससुराल भी सर तुम देर अपना शापुर ब्राह्मण है।
0: अच्छा अच्छा क्या बात है।
1: हां जी हां जी।
0: तो है आपो चंबा थों बिलोंग कर देन है ना जी?
1: चंबे तो आगो पर मोर रोड पर नहीं ना सर चमेरा चरण टू बग्गा डैम है ना बद्दल वाला जगह।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: आस्ते सुनना तो बुलगुल ले लगा सर। हां जी।
0: अच्छा क्या बात है था ससुराल बड़ी दूर जोड़े तो है
1: करना का सर ता चलो मुकद्दर दे गल हुंदे ना।
0: हां बिल्कुल लेख लेख तो ऊपर वाले लिखुरे बंदे ना।
1: जी जी सर जी
0: तठी बंदे। अच्छा 4 बजे बड़े बाढ़ लगी बंदे की कार्यक्रम शुरू हो चुका अपना गादा।
1: अरे 4 के बजे करे ता अपना काम छड्डे करे ता अपना स्टाफ मेंबर प्रोग्राम सुनांदा सर पूरा घंटा भर।
0: क्या बात है क्या बात है
1: जी।
0: धन्यवाद जी। हम अपने आप जो बड़ा सौभाग्यशाली मनो कि तो है इतने डिपार्टमेंट रहे मनो के सो इस अपने गाद्य कार्यक्रम जो इतनी शिद्दत सो की होने देना मुंजो डीसी ऑफिस हूँ धर्मशाला को थुना तड़ी भी मुंजो अकी है अक तड़ी है डीसी ऑफिस रे व्यक्ति थी ये तीन बल्लो क्या है चूरथ हम 5 के स्वतंत्र कार्यक्रम जरूर होने देन बल्लो बेशक असू हेडफोन लाइक होना पाया लेकिन है होने दे जरूर न। धन्यवाद करनो जितने भी डिपार्टमेंट रहे मनु इस कार्यक्रम जो हुन देन जी।
1: आके तो से सर इंडिया का खास है तब हुन कर दे बिजली बोर्ड दा जेड़ा धर्मशाला चालू करने दा समर्थ दी दा बड़ी खुशी भाई जी इंदा नाम तो प्रकाशित कर इतना जन संपर्क अंदर
0: जी।
1: हां जी
0: चलिए जी थैंक यू जी।
1: तो सर आके फरमाइश अगर बैठक ले तो पावन ठाकुर इंदा अपना लोक लगाए ना।
0: हां जी
1: बांद्रू वाला गाना सुना देना मेहरबानी सर।
0: अच्छा अच्छा चलिए ठीक है जी। ठीक है जी जरूर होने ले और कार्यक्रम में अपना प्यार जरूर ही रखें हमेशा।
1: ओके सर बिल्कुल ना बिल्कुल
0: ठीक है जी। थैंक यू सो मच धन्यवाद।
1: ओके सर जी धन्यवाद। ओके ओके ओके
0: जी। शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब हुणु कर दे हिन इंदी अपनी गपार जी सचिन कपूर सो की इन अगले श्रोता भी आसोगे कॉल करु कर दे हिन कनेक्ट कर दे पुस दिन कौन बोलन दिन और कड़ी थों बोलन दिन। नमस्ते जी।
2: हेलो।
0: हेलो नमस्कार जी वेड़ी गुंजन मां स्वागत है।
2: नमस्कार जी।
0: जी कौन बोलन दिन और कड़ी थों बोलन दिन?
2: आज तो कनाडा तो बोलू कर दिन।
0: कनाडा थों कौन बोलन दिन जी?
2: अनु बोलला दिन।
0: अच्छा अनु।

0: भगवान के बारे की बोलते इतनी
1: अच्छा
0: आईक्यू दुए करना एमिली बच्ची के नहीं रांदे आजकल
1: हाँ जी
0: फोन ना तो दीदी रांदे। हाँ
1: जी
0: जी हाँ जी मुझे
1: चलिए
0: बड़ा अच्छा लगता है। ठीक
1: ठीक है अनु जी, धन्यवाद और बने रहिए कार्यक्रम
0: है
1: सोगे। थैंक
0: ठीक है धन्यवाद।
1: यू सो मच जी। श्रोताओं तो ऐसा बन रहे ने समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और आऊँ सचिन कपूरा दादी माता रा भजन के सो जरूर होना हा अन्य फरमाइश अभिगेन सो जरूर सो।

मंजू चिश्ती जी अपने आप में ही बहुत कमाल हिन यारे बारे तो मंजू शब्द के न सो मंजू लगा हट पैगन देखे यारे तारीफ के करूँ शो तो बहुत ही अच्छी हिमाचली लोक गायिका हिन और बहुत ही सुरीली आवाज़ री ए मालकिन हिन शो तो और वाकई में ही बहुत कमाल है गायिका न इस गीता जो वन करने रहा दिल वाकई में ना बल्लू गर्दा थू लेकिन क्या करिए फरमाइश और दौर ऐसा उस पूरा करना पैना और कजो की समय रहा अभाव आता फिर समय सो की चलना किया सो बहुत अहम रहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा

শত এফ এম ব্যান্ড কিয়ানো দশমলব দুই মেগা হার্টজ পর ভিডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো সব ইউটিউন করো আর ফিলহাল ওক্ত হচ্ছে গো তুসু সবি তো অলবিদা লেনে রে তুসু সবি জো টাটা বাই বাই বলনে রে বসে বলনা চানো শতং কি হাজদে রে মুস্কুরন্দ রে মা বাপ রে সেবা জরুর করা সাস সসুর রে সেবা কি অসো ভি জরুর করা শতং আর বুজুর্গ রে সেবা জরুর করা কদি লগা कि तुह कसके भी सहायता करी सकन था तैयारी सहायता भी किया सो जरूर करा अपने परिवार जो खुश रखा चाहता हूँ और सियाने थो भी बोलना चाहता कि अपने परिवार जो चलाने वास्ते कुछ एक चीज़ भी कुर्बानी किया सो सियाने भी देना पैंते है ना कजो कि घर किया सो चलाना कोई आसान गल थोड़ा ना बनते कभी अपनी ख्वाहिशा मारना पी कभी अपनी ख्वाहिशा के ना सो दबाना पी कभी अपनी ख्वाहिशा किया सो रखना भी पैंती हैं कभी प्यारा हो गए तो कभी गुस्से हो गए यही इस दुनिया का दस्तूर और ऐसी दस्तूर माँ है सब क्या ना सो उलझू करते हैं अपनी ज़िंदगी जा जीव करते हैं है ना तो उलझना घाटा जीना ज़्यादा है श्रोताओं और इन्जॉय ज़्यादा करना है लाइफ रख जो कि 84 लाख जीवन थो बाद किया सो ये जीवन असू मुड़ो है श्रोतों न जाने फिर असू कहने मुड़ने न जाने रिश्ते किया सो फिर कहने मिलने हैं सो जो भी रिश्ते मिल रहे हैं सो तो यहाँ रिश्ते जो बाखूबी निभा अच्छे तरीके होगी निभा प्यारा सो की निभा

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला। बच्चों के पोषण को मजबूत करने के लिए कांगड़ा में शुरू हुआ मिशन भरपूर 2.0। शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं। दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि कर खिलाड़ियों का बढ़ाया सम्मान। इंडिगो से हवाई यात्रा करना होगा महंगा। सरकारी CBSE स्कूलों में मेरिट नहीं, शिक्षकों की पसंद नियुक्ति का आधार। पटवारी के 574 पदों की भर्ती की प्रक्रिया इसी माह होगी पूरी। अब 10 अक्टूबर को होगी कैबिनेट मीटिंग। अब समाचार विस्तार से।

जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज वैरवा ने अधिसूचना जारी करते हुए खबली दो सड़का से बनेदा हट्टी तक के सड़क मार्ग पर सीसी पेमेंट के कार्य के कारण पैसा से बनेदी हट्टी तक सड़क को सभी प्रकार के वाहनों के लिए 6 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इस अवधि के दौरान यातायात के लिए पैसा से भट्टा सड़क मार्ग को वैकल्पिक सड़क मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि एम्बुलेंस, अग्निशमन तथा अन्य आपातकालीन वाहनों का निकलना यदि संभव हो तो प्रतिबंध से छूट रहेगी। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर में आयोजित HBU इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप के समापन समारोह में शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उल्लेखनीय है कि केवल सिंह पठानिया सोमवार देर रात करीब 3 बजे जापान से एशियन गेम्स से वापस प्रदेश लौटे और सुबह खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने तथा हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेहतर सुविधाएं एवं प्रोत्साहन उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातक विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य की कामना की। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल देवभूमि है बल्कि वीरभूमि भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंदिरों, लोक परंपराओं और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत ने हिमाचल प्रदेश को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। उनका कहना है कि बिलासपुर के लोगों ने भी राष्ट्र निर्माण और विकास की कीमत के रूप में विस्थापन का दर्द सहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकास की परिकल्पना के अनुरूप निर्मित भाखड़ा बांध केवल विकास और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक ही नहीं है बल्कि ये बिलासपुर के लोगों के त्याग और योगदान को भी दर्शाता है। बच्चों में कुपोषण की रोकथाम तथा उनके समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन कांगड़ा के सहयोग से रक्कड़ धर्मशाला से मिशन भरपूर 2.0 का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और मिशन भरपूर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने कहा कि हमारा विश्वास है कि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला हैं। आज के नौनिहाल ही देश के आने वाली पीढ़ी हैं और यदि उन्हें बचपन से ही उचित पोषण, स्वास्थ्य और बेहतर वातावरण मिले तो वे आगे चलकर समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। बच्चों का पोषण केवल सरकार या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक माता पिता और परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली और एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण कई बार बच्चों को वो समय और व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिल पाता जो उनके समुचित विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे में वैज्ञानिक अनुसंधान और पारंपरिक पोषण पद्धतियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिशन भरपूर इसी दिशा में एक अभिनव पहल है जिसके तहत बच्चों को स्वादिष्ट एवं पोषण युक्त सप्लीमेंट्री उत्पाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 27 साल तक गरीब बच्चों को मिलेगी पॉकेट मनी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब जो है 10 अक्टूबर को शिमला में होगी। इस दिन सेकेंड सैटरडे की छुट्टी भी है। छुट्टी के दिन सचिवालय में 11 बजे ये बैठक रखी गई है। इससे पहले 11 सितंबर और 5 अक्टूबर को रखी गई बैठकें नहीं हो पाई थी, इसलिए इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ले सकती है। इस बार रोजगार से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार का फोकस रहने वाला है। कॉमन कैडर के तहत जूनियर इंजीनियर की 500 से 600 पदों पर भर्ती का मामला जा सकता है। इससे पहले जेई की भर्ती संबंधित विभाग ही करते थे और विभाग ही सीनियोरिटी मेंटेन करते थे, लेकिन अब ये भर्ती JOAIT की तरह भर्ती निदेशालय के तहत होगी। हिमाचल प्रदेश में पटवारियों के 574 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी माह पूरी कर ली जाएगी। इन पदों के लिए करीब 1,90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
प्रदेश में करीब 19 परीक्षा केंद्रों पर पटवारी भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि भर्ती प्रक्रिया लंबी है, ऐसे में नवंबर माह तक इसे पूरा होने की उम्मीद है तथा इस वर्ष के अंत तक ये पटवारी प्रशिक्षण पर भेज दिए जाएंगे। भर्ती के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मामलों, इंतकाल, जमाबंदी, निशानदेही और अन्य राजस्व कार्यों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। नए प्रावधानों के तहत प्रदेश सरकार जरूरत के अनुसार सरकारी सेवा में कार्यरत शिक्षकों से CBSE से संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी। 27 साल तक इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले युवाओं को 1,000 की न्यूट्रिशन एजुकेशन ग्रांट भी दी जाएगी। इसका लाभ प्रदेश के 23,000 युवाओं को मिलेगा। दरअसल प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का दायरा बढ़ाकर अब 27 साल तक कर दिया गया है। योजना के तहत पात्र बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के साथ पोषण व स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए हर महीने 1,000 रुपए की विशेष सहायता भी दी जाएगी। इससे प्रदेश के करीब 23,000 युवाओं को लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अब तक योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ही आर्थिक सहायता दी जाती थी। सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए सहायता की अवधि बढ़ाकर 27 वर्ष करने का फैसला लिया है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी पहुंच गई हूं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में आपके लिए प्यारा सा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। जी हां श्रोताओं, अब से लेकर 8 बजे तक रहेंगे आपके साथ, करेंगे आपका मनोरंजन, भरपूर जानकारियाँ भी आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही साथ करेंगे आपके साथ बातचीत। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और श्रोताओं को लिए चलते हैं मौसम विभाग की ओर। जी हाँ श्रोताओं, आइए जानते हैं क्या कुछ कहता है इस समय धर्मशाला का मौसम। 13 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं और वातावरण में नमी है 85%। हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश इस समय भी हो रही है और स्थानीय जानकारी कहें या स्थानीय लोगों के कहे अनुसार जब पहाड़ों के ऊपर हल्की सी धुंध होती है उसका मतलब होता है कि इस समय बर्फबारी जो है धौलाधार की चोटियों पे हो रही है। तो इसका जो परिणाम है वो आप कुछ समय के बाद देख सकते हैं या हो सकता है सुबह हम जब उठें तो हमारे पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से लदी हुई हमें मिलें। और पहाड़ों पे बर्फ गिरना ज़रूरी भी होता है श्रोताओं, हमारे साल भर के पानी का जो किल्लत होती है वो नहीं होती अगर समय समय पर पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती रहे। और पहाड़ों की खूबसूरती भी तभी अधिक निखर कर आती है जब पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हो। जी हाँ श्रोताओं, और आजकल के मौसम की हम बात करें तो समझ नहीं आ रहा कि बरसात है या सर्दी है, क्योंकि मिक्स सा कुछ मौसम है। और इस मौसम में जब कुछ समझ ना आए तो खैर समझना भी नहीं चाहिए, उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और बातचीत चलती रहेगी, जानकारियां भी साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की पैडमैन फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में समय है अब आपके साथ विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। जो अवसर आज आपके पास है वही सबसे उत्तम है, इसलिए कल पर कुछ न टालें। आज का विचार फिर से दोहरा रहे हैं श्रोताओं, जो अवसर आज आपके पास है वही सबसे उत्तम है, इसलिए कल पर कुछ न टालें। श्रोताओं अक्सर जिंदगी में हम अच्छे अवसर की तलाश करते रहते हैं कि ये अवसर हमें इस तरह से मिलेगा तब हम जिंदगी में कुछ करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। या हमें लगता है कई बार अवसर आता भी है और हमें लगता है नहीं, इससे भी और बेहतर समय आएगा तब हम कुछ करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जो समय जो अवसर इस समय आपके पास है वही सबसे उत्तम है। उसी समय का सदुपयोग करके हम उस अवसर को और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी में जो है वो बदल सकते हैं। बस देर होती है उस अवसर को पहचानने की। इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

श्रोताओं, और अब बात करते हैं आज के दिन की। जी हाँ श्रोताओं, आज है 6 अक्टूबर और हर साल 6 अक्टूबर को पूरी दुनिया में, विश्वभर में मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस। इसे हिंदी में मस्तिष्क पक्षाघात और अंग्रेजी में सेरेब्रल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये दिन इस स्थिति से पीड़ित लोगों, उनके परिवारों और इससे जुड़े संगठनों को एक मंच पर लाने तथा समाज में उनके अधिकारों व समावेश के लिए आवाज़ उठाने का एक वैश्विक अभियान है।

श्रोताओं, मस्तिष्क पक्षाघात है क्या? ये बच्चों में होने वाली एक न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका संबंधी स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर के अंगों की गति यानी मूवमेंट और बैलेंस और पोस्चर को प्रभावित करती है। ये समस्या तब होती है जब शिशु के जन्म से पहले, जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद उसके विकसित हो रहे मस्तिष्क को कोई क्षति पहुंचती है। इसके कारण मांसपेशियों में कड़ापन या कमजोरी आ जाती है, जिससे व्यक्ति को चलने फिरने, बोलने और सामान्य दैनिक कार्यों में कठिनाई होती है। ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है और ना ही समय के साथ बढ़ती है। श्रोताओं, मस्तिष्क पक्षाघात के बारे में कार्यक्रम में आपको और जानकारी हम देंगे। कार्यक्रम में अब लिए चलते हैं आपको फिर से मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, मैं हूं ना, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम और इसी फिल्म का गीत कार्यक्रम में आगे आप सुनने जा रहे हैं सोनू निगम और साथियों की आवाज़ में। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा ट्रैक।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ अब लेते हैं थोड़ा सा बातचीत का मज़ा। धर्मशाला जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती का वर्णन हम सभी करते आए हैं, और हम सबको पता है कि धर्मशाला छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, और साल भर में दूर दूर से सैलानी यहाँ पे आते हैं, और उन सैलानियों की वजह से हमारे जो स्थानीय कारोबारी हैं उनका कारोबार भी चलता है। लेकिन धर्मशाला और उत्तराखंड की बात करें, देहरादून की बात करें, तो पिछले 3-4 दिनों में ऐसी स्थिति हो गई थी स्थानीय लोगों की कि हमें लगने लगा था कि बस अब और पर्यटक नहीं। और आप सभी ने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हमारा जो धर्मशाला का एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है त्रियुंड, जहाँ पे जाते हैं लोग बड़ी खुशी खुशी और मतलब चाव से शौक से जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे इस समय जो पर्यटकों की भीड़ थी वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उसके बारे में आप सभी ने देखा ही होगा। और उन लोगों को ना तो सरकार की ओर से रोका गया था, और स्थानीय लोगों का तो खैर जोर नहीं चलता जब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो। और ऐसे में हालात जो हैं वो खासकर पहाड़ों पे बद से बदतर हो जाते हैं दोस्तों। खैर हम स्थानीय लोग हैं, आपस में ही हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन सरकार से गुजारिश भी कर सकते हैं और करनी चाहिए कि जहाँ पर त्रियुंड जाने वाले लोगों के लिए एक टिकट उन्होंने निश्चित कर दी है, वहीं पे उनके जाने की जो संख्या है या कितने लोग पर डे के हिसाब से वहाँ जाने चाहिए और कितने लोगों का वहाँ पे जो है वो रात को रहना होगा, ये सब अच्छे से निर्धारित करके ही लोगों को वहाँ पे भेजना चाहिए, ताकि वो हमारी स्थानीय बोली में कहते हैं कि ज़्यादा भसड़ ना मचे। और इन दिनों 3 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक जो है वो धर्मशाला, मैक्लोडगंज, त्रियुंड, जो भी हमारे प्रसिद्ध यहाँ के पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पे इतनी बुरी तरह से भसड़ मची थी कि स्थानीय लोगों का बहुत ही बुरा हाल था। तो इसमें कोई दो राय नहीं, शक नहीं कि हमारा धर्मशाला, मैक्लोडगंज और ऊपर का जो क्षेत्र है वो निर्भर करता है पर्यटकों के ऊपर ही, लेकिन जब इतनी भारी तादाद में पर्यटक आ जाएंगे तो संभाल पाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए अगर आपके भी रिश्तेदार हिमाचल से बाहर रहते हैं और धर्मशाला घूमने आना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर डेज स्थानीय लोगों को पता होता है कि किन दिनों में आया जा सकता है, किन दिनों में धर्मशाला की प्राकृतिक खूबसूरती को हम अच्छे से निहार सकते हैं। यहाँ पे आकर के लोग अच्छा अनुभव लेकर के जाएं श्रोताओं, तभी अच्छा लगता है। और भीड़ पे भीड़, और ना तो चलने की जगह, और खाने पीने का भी पर्याप्त सामान आपको पता है इतनी दूर पहाड़ों पर पहुँचाना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, और साथ ही साथ सरकार की ओर से भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे कि अनियंत्रित भीड़ वहाँ ना पहुँचे, और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जाएंगे तो हमारे पहाड़ों पे। खैर मैं आज से लगभग 10 साल पहले गई थी, उस वक्त भी बहुत टूरिस्ट आते थे, और जो हरी भरी घास उससे भी पहले यानी कि अपनी टीनेज में मैंने वहाँ पे देखी थी, वो आज से 10 साल पहले ही वो घास जो है वो चलने से, लोगों के पाँव पड़ने से वो घास जो है वो तबाह हो गई थी। वहाँ पे मिट्टी का ही मैदान नज़र आता है, तो अब तो उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं, तो क्या ही हाल वहाँ का हो गया होता, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। चलिए श्रोताओं ये बातचीत हमारी यूँ ही जारी रहेगी, साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी हम करते रहेंगे। फिलहाल लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के एक और अगले गीत की ओर। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, श्रोताओं यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। जी हाँ श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला का साथ इस समय है आपके साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं। और गीत से पहले हम बात कर रहे थे श्रोताओ धर्मशाला की खूबसूरती की, और यहाँ पे बहुत से सैलानी आते हैं, विश्व भर से पर्यटक यहाँ साल भर आते हैं। और जो हमारे आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक के लोग जो हैं, वो जब भी छुट्टियाँ होती हैं 2 से 3, यानी सैटरडे संडे की छुट्टी के साथ 1 या 2 छुट्टियाँ अगर और होती हैं, तो उन्हें लगता है कि चलो पहाड़ों पे घूमा जाए। और सबसे नज़दीकी पहाड़ हमारे पठानकोट और आसपास के जो पंजाब के क्षेत्र हैं, उनको धर्मशाला के ही पड़ते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं पर्यटक। और गीत से पहले मैंने जिक्र किया कि त्रियुंड में और भागसुनाग के जो मंदिर की बात करें, थोड़ा सा ट्रैक है शिवा कैफ़े की, और वहाँ इतने ज़्यादा लोग थे कि चलने फिरने के लिए भी जैसे मेले में धक्के लगते हैं ना, उस तरह की स्थिति बनी हुई थी। और स्थानीय लोगों का अगर इनकेस आना जाना ऊपर से नीचे हो रहा था, तो उन्हें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोकल जीप और बसेस चलती हैं, वो कैंट तक ही मिल रही थी। और कैंट से आगे अगर किसी को अपने घर तक पहुंचना है तो आम लोग पैदल जा रहे थे, 1 से 1.5 घंटा उन्हें पैदल जाना पड़ रहा था। खैर, ये तो हुई श्रोताओं आम सी बात, लेकिन इस बात को आपके साथ साझा करने का मेरा मकसद कहें वो यही है कि अनगिनत लोग जब पहाड़ों पे पहुंचते हैं तो कूड़ा कचरा भी फैलाते हैं। हम कितनी ही कोशिश कर लें, जाने अनजाने कहीं ना कहीं हमारा जो कूड़ा है वो फैला हुआ रह ही जाता है। और एक तो पर्यावरण को नुकसान होता है, और ऊपर से इतने सारे लोगों को वहाँ पे संभाल पाना वो भी मुश्किल होता है। और इसके बारे में ही मैं बात कर रही थी, और अभी अभी एक और जानकारी मेरे साथ साझा की गई है, जिसमें कि हमारा जो वन विभाग है उनकी ओर से ये कोशिश है, या यूं कहें कि उनके द्वारा अब ये तय किया गया है कि त्रियुंड जैसे पर्यटक स्थल पर जाने के लिए एक जो है संख्या निर्धारित कर दी गई है। लेकिन जैसे कि 5,000 से ऊपर लोग वहां पहुंच गए थे पिछले दिनों में, तो अब वन विभाग की और सरकार की ओर से ये कोशिश रहेगी कि 1,000 मैक्सिमम लोग जो हैं वो त्रियुंड के लिए रवाना हो प्रतिदिन के हिसाब से। यानी जब भी पर्यटक बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और ट्रैक पे जाना चाहते हैं, तो 1,000 मैक्सिमम उनकी संख्या रहेगी, इससे अधिक पर्यटकों को वहाँ पे जाने की परमिशन जो है वो नहीं मिलेगी। तो श्रोताओं, अगर ऐसा हो तो अच्छा है, पर्यटक भी खुल करके अच्छे से आराम से वहाँ पे जा पाएंगे और हमारी खूबसूरती भी निहारेंगे और पहाड़ों को साफ सुथरा रखने में भी मदद करेंगे। तो अच्छी पहल है अगर ऐसा हो तो। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आपके साथ बातें भी होती रहेंगी, साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी होगा। और अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि हम फेसबुक पेज पर भी इस समय लाइव हैं, आप जुड़ सकते थे, लेकिन अब मैं इस वीडियो को कर रही हूँ यहाँ पे पॉज, क्योंकि अब हमें करना है आपका मनोरंजन। लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर, 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ अब जानकारियों की ओर रुख करते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में संस्थान के पहले स्नातक बैच को उपाधियां प्रदान की। एम्स बिलासपुर की ये विकास यात्रा प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में इसके योगदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र कुमार अरोड़ा तथा कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह भी उपस्थित थे। प्रथम स्नातक बैच एवं स्वर्ण पदक विजेताओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों, उनके माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दीक्षांत समारोह एम्स बिलासपुर के विकास तथा चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान की बढ़ती भूमिका की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। समारोह में कुल 52 विद्यार्थियों को डिग्रियाँ प्रदान की गई, जिनमें 43 MBBS, 26 BSc ऑनर्स नर्सिंग, 9 BSc अलाइड हेल्थ केयर तथा 14 MD एम्स के MD MS के विद्यार्थी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। MBBS से सागरिका और रक्षित वशिष्ठ, BSc अलाइड हेल्थ केयर साइंस से भावना ठकराल, BSc ऑनर्स नर्सिंग से भव्या मल्होत्रा तथा MD कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन से प्रतीक गोयल को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह पर संस्थान को बधाई दी तथा स्नातक विद्यार्थियों और उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति के इस ऐतिहासिक अवसर के महत्व और गरिमा को और बढ़ाया। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर की स्थापना से प्रदेश को एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान मिला है जो अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र और अनुसंधान को भी बढ़ावा दे रहा है। श्रोताओं ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब जानकारियों के बाद चलते हैं फिर से मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओ, बात कर रहे हैं हम धर्मशाला की खूबसूरती की, पहाड़ों की खूबसूरती की, और एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आपको ना सुनवाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ श्रोताओं, रोज़ा फिल्म का गीत कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं SB बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ें हैं। पहाड़ों की खूबसूरती तो इसमें नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, इसका जो फिल्मांकन है वो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं, और हमारे हिमाचल प्रदेश मनाली के ही पहाड़ इस गीत में जो है आपको दिखाए गए हैं। चलिए पहाड़ों को इमेजिन कीजिए और इस प्यारे से खूबसूरत से गीत का आनंद उठाइए।

श्रोताओ, इस समय आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे समाचार। यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: लगेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी है उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर टीम को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है जिसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एम्प्रियन 30 पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हुर्मुज जलजंगों मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। भारत ने कल काला सागर में वाणिज्यिक मालवाहक जहाज एमवी रोयाड मामा 2 पर हुए हमले की भी निंदा की है। चालक दल के सदस्यों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की।
2: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्म वैज्ञानिक फ्रांसिस कोलजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर मैच में डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में समाचारों के बाद अब लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, जब वी मेट फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज है 6 अक्टूबर का दिन। जी हाँ श्रोताओं, विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस आज जो है वो विश्व भर में मनाया जाता है। इसका इतिहास, या यूँ कहें कि इसकी शुरुआत जो है वो वर्ष 2012 में की गई थी। इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया के सेरेब्रल पाल्सी अलायंस और अमेरिका के यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। शुरुआती अभियान इसका ये आंदोलन चेंज मार्ड वर्ल्ड इन वन मिनट नामक एक छोटे से अभियान से शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य ऐसी तकनीकों और विकारों को खोजना था जो सीपी से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बना सके। इसके तहत पहला बड़ा आविष्कार एक सौर ऊर्जा से चलने वाली व्हीलचेयर थी।

श्रोताओ, वर्ष 2026 के थीम की अगर हम बात करें तो इस साल का थीम है विशिष्ट और एकजुट, यूनिक एंड यूनाइटेड। ये थीम सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हर व्यक्ति के अनूठे अनुभवों और उनकी व्यक्तिगत पहचान का सम्मान करती है। साथ ही समाज में समानता, सुगमता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से एकजुट होने पर जोर देती है। श्रोताओ, इस दिन का महत्व और उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है। दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग सेरेब्रल पॉलिसी के साथ जी रहे हैं। समाज में स्थिति को लेकर काफी सारी भ्रांतियां और कलंक भी हम कह सकते हैं जो कि फैले हुए हैं, और उनको मिटाना इसका मुख्य उद्देश्य है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत जारी रहेगी और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी रुकना नहीं चाहिए। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

0: इंडियन रोमियो।
1: श्रोताओ, धड़क फिल्म का गीत आपको कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं। गीत को गाया है अजय गोगा वाले ने।

0: पे लेट के गिन चुका हूँ जो रोज वो सितारे गिनू, क्यों न जाने दोस्ती में दिल न लगे, सबसे
1: यू स्पीक इंग्लिश
0: तोड़ताड़ के
1: गेट आउट
0: चाह

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

श्रोताओं सुना रहे हैं कार्यक्रम में आपको प्यारे प्यारे से गीत जानकारियां भी साझा कर रहे हैं। और अब फिर से चलते हैं और करते हैं बातचीत जानकारियों से भरपूर। राष्ट्रीय पोषण माह की बात करते हैं श्रोताओं। राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है और भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय पोषण माह इस समय जो है वो चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रव्यापी ये एक अभियान है और इसका मुख्य उद्देश्य देश से कुपोषण को जड़ से खत्म करना है और हर नागरिक तक सही पोषण की जानकारी पहुंचाकर इसे जन आंदोलन बनाना है। श्रोताओं, राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में भी हम कार्यक्रम में आगे आपसे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल चलते हैं फिर से कार्यक्रम में और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और मेरे साथ कार्यक्रम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को बता दें कि इस समय हम फेसबुक पेज पर फिर से लाइव आए हैं और धर्मशाला के साथ साथ हमीरपुर ढटवाल की आवाज़ 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे हमीरपुर के प्यारे प्यारे श्रोता भी हमें इस समय सुन पा रहे हैं लाइव, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर आप हमें लाइव देख भी सकते हैं। श्रोताओं कार्यक्रम में बातचीत भी हो रही है, आपको गीत भी सुनाए जा रहे हैं, और अब बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, सितंबर माह से अक्टूबर तक चलता है राष्ट्रीय पोषण माह, और श्रोताओं पोषण वो पोषण जो हमारे लिए हमारे शरीर के लिए जरूरी है, और ये पोषण माह खासकर मनाया जाता है हमारे जो शिशु हैं, नवजात शिशु या बच्चे जो अभी गर्भ में हैं, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और स्तनपान करवाने वाली जो हमारी माताएं हैं, खासकर उनके लिए ये जो माह है ये खास तौर पर मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में हो रहे कुपोषण को जड़ से खत्म करना। और कुपोषण किन खास वजहों से होता है, उनमें हमारा आहार जो है वो सबसे अहम होता है। अगर हम आहार ठीक से नहीं लेते या पौष्टिक आहार नहीं लेते तो बच्चे के शुरुआती दिनों में ही जो है वो कुपोषित होने का डर रहता है। और कुपोषण का शिकार अगर बच्चा एक बार हो जाता है श्रोताओं, तो फिर कई बार वो कुपोषित बच्चा ताउम्र कुपोषित ही रहता है। इसलिए गर्भवती जब माँ होती है उस समय से ही गर्भवती माँ का भी ख्याल रखा जाता है, और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को सही समय पर क्या पोषण चाहिए उसके लिए समय समय पर टीकाकरण का भी जो है वो प्रावधान होता है। और गर्भावस्था के समय माता को क्या खाना है, किस तरह से शिशु की देखभाल करनी है, और जन्म के बाद सबसे पहला आहार माँ का जो दूध होता है वही होता है। 6 महीने के बाद बच्चे को दिया जाता है घर का बना हुआ पौष्टिक खाना, कह सकते हैं हम दाल का पानी, उबली हुई दाल का पानी, और किस तरह से आहार को पौष्टिक बना करके बच्चों को खिलाया जाता है ये सारा कुछ जो है वैसे तो हमारी माताएं बहनें पहले से ही जानती हैं, लेकिन इस बार या यूं कहें कि पिछले कुछ एक सालों से राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान जोर शोर से सरकार की भी ये कोशिश है कि हमारे देश के बच्चे, हमारे राष्ट्र के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट पैदा हों, कुपोषण का शिकार बिल्कुल ना हो, ताकि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। तो श्रोताओं आपके घर में भी या आसपास कोई गर्भवती महिला है, कोई किशोरी है जिसे कि पोषण की आवश्यकता है, तो आप इस महीने भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान ही नहीं बल्कि वैसे भी नॉर्मल जो हमारी लाइफ होती है, रूटीन लाइफ, उसमें जो हम खाना खाते हैं उसमें आप पौष्टिक आहार के प्रति जो है उन बच्चियों को, उन माताओं को और उन छोटे बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, और समाज में एक स्वस्थ समाज या यूं कहें कि कुपोषण रहित समाज की हम जो नींव रखने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं, ताकि हमारा समाज जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट आगे हो और सारे बच्चे, सब लोग बिल्कुल हेल्दी और तंदुरुस्त हों। श्रोताओ इस समय आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है श्रोताओ, जब मैं बातें करने लगती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे आपको गीत भी सुनवाना है। तो मुझे याद आ गया कि अब बातों को यहीं पे विराम देना है और आपको कार्यक्रम में आगे एक और प्यारा सा गीत सुनवाना है। तो श्रोताओं कार्यक्रम में आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, और अब सुनवा रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत आप सभी को, आप सभी के रेडियो सेट्स पर। एंजॉय कीजिए और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, बातें जब शुरू होती हैं तो बस होती ही रहती हैं, उनका कोई अंत नहीं होता है। और गीत संगीत हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है, और जब भी आप अपने आप को थोड़ा सा लो महसूस करें तो ज़रूर रेडियो गुंजन का सहारा लें। और वैसे भी रेडियो गुंजन का सहारा हमारे धर्मशाला और आसपास के लोग जो हैं वो लेते ही हैं, और समय समय पर कोई ना कोई श्रोता हमें मिलता है। और आपका जो रेडियो गुंजन के प्रति प्यार है वो बहुत ही गहरा है श्रोताओं, और भी ये प्यार गहरा होता रहे हम यही चाहते हैं। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: click on the bell icon.
1: श्रोतो, दीवाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और साल 1992 की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवाना का सदाबहार नगमा सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक रोमांटिक गानों में से ये एक गाना है और इस गाने को कुमार शानू ने गाया था, संगीत नदीम श्रवण की जोड़ी ने दिया था और इस खूबसूरत इस गीत के जो बोल हैं वो समीर और अनजान ने लिखे थे। इस सुपरहिट गीत को बनाने के पीछे बहुत दिलचस्प कहानी है और वो ये है कि ये गीत मात्र 9 मिनट में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। आमतौर पर रिकॉर्डिंग में कई घंटे लग जाते हैं लेकिन कुमार शानू की तैयारी और नदीम श्रवण के संगीत की स्पष्टता की वजह से ये गाना पहले दूसरे टेक में ही फाइनल हो गया और जहाँ तक इस गाने की रिकॉर्डिंग का समय है वो 9 से 10 मिनट का बताया जाता है कि 9 से 10 मिनट में ये इतना आइकॉनिक और खूबसूरत गाना जो है श्रोताओं वो बन करके तैयार हो गया था। और ये गाना सदाबहार नगमों में से एक है, जब भी इसे सुनते हैं तो इसकी धुन इसके बोल हमारे जहन पे छाए रहते हैं और हम साथ ही साथ गुनगुनाते हैं। खैर श्रोताओं, आप यूं ही गाते रहें गुनगुनाते रहें क्योंकि आपके साथ है रेडियो गुंजन का साथ। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम में समय आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। कार्यक्रम में समय हुआ है प्रादेशिक समाचारों का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन। हम वापस आएंगे 7:55 पर फिर से।
2: द्रौपदी मुर्मू ने एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत, मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक व उपाधियों से किया अलंकृत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टरों से एम्स की प्रतिष्ठा बनाए रखने और समर्पण भाव से कार्य करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बताया सरकार की प्राथमिकता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पीजी मेडिकल की सीटें बढ़ाने में सहयोग का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को दी मंजूरी, अनुसंधान कार्यों को मिलेगी मजबूती। और एचआरटीसी चालक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 8 अक्टूबर से चक्का जाम करने का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज बिलासपुर पहुंची। एम्स हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने संस्थान के मेधावी प्रशिक्षकों को पदक व उपाधियों से अलंकृत किया। इस मौके पर कुल 92 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। राष्ट्रपति ने विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा पेशे का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना होना चाहिए और डॉक्टरों की संवेदनशीलता व करुणापूर्ण व्यवहार बीमार व्यक्ति को
3: रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स बिलासपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण इस संस्थान की विशेष जिम्मेदारी बनती है और हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में बसी आबादी तक समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एक बहुआयामी चुनौती है। राष्ट्रपति ने डिग्रियां व पदक हासिल करने वाले प्रशिक्षु डॉक्टरों को बधाई दी।
3: आप इस संस्थान से उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम बैच के विद्यार्थी हैं। कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट लॉन्ग, इसीलिए आपका कर्तव्य, आपका मेहनत, आपका कमिटमेंट, आपका हार्डवर्क आपके उत्तर पीढ़ी बाद में आएंगे और फॉलो करेंगे, और आप वो एक ड्राइवर होंगे जिसके पदांग अनुसरण करके दूसरे विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे।
2: दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि बिलासपुर के विद्यार्थियों को इस प्राकृतिक वातावरण, उन्होंने डॉक्टरों से एम्स की प्रतिष्ठा और ब्रांड को बनाए रखने और मानवता के लिए समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार को केंद्र सरकार प्राथमिकता दे रही है और आयुष्मान भारत योजना से देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं।
0: मैं ये चाहूंगा कि आप हाई डेडिकेशन के साथ, ईश्वर की बहुत कृपा है कि आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एजुकेशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिस इज हाउ सोसाइटी इज ट्राइंग टू गिव, सो इट इज अ प्रिविलेज टू यू। और बिलासपुर वालों को तो विशेष करके बधाई देना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक वातावरण में आपको पढ़ने का मौका मिला, इसका हमको सदुपयोग करते हुए आप जहां भी जाएं एम्स का ब्रांड नेम जरूर बना करके रखें और उसको ध्यान में रखें, यह आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हाई क्वालिटी की सर्विसेज देंगे, मानवता के लिए काम करेंगे।
2: इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अपने 3.5 वर्षों के कार्यकाल में राज्य सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पीजी की सीटें और अधिक बढ़ाने में सहयोग का आग्रह किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और सांसद हर्ष महाजन भी इस मौके मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्राधिकरण देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। उन्होंने बताया कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी।
4: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%-8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
2: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
5: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
6: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th-6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th-8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
5: स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
7: सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई।
8: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
8: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
7: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
8: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
7: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
8: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य

0: एक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को यूपीआई ने किस तरह साकार किया है। भारत में 25 अगस्त 2016 को यूपीआई को आम जनता के लिए आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज देश के दूरदराज के गांवों में भी यूपीआई के माध्यम से लेन देन हो रहा है। देश में इस समय 55 करोड़ से अधिक लोग यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं।
1: भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं। हमें गर्व है कि भारत के इस वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम को कई देश अपना रहे हैं।
0: एचआरटीसी चालक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 8 अक्टूबर से चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि चंबा में तैनात निगम के एक अधिकारी द्वारा की गई कथित वित्तीय अनियमितताओं और पिछले 3 महीनों से खातों में जीपीएफ जमा न होने से चालक व परिचालक खफा हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई न होने पर 8 अक्टूबर से चंबा में चक्का जाम किया जाएगा और यदि फिर भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में बसें नहीं चलाई जाएंगी।
2: चंबा में हमने मुद्दा उठाया तो इन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। पहले हम चंबा को 8 तारीख बंद करेंगे। अगर 8 तारीख चंबा बंद करने से भी कुछ नहीं होता है तो पूरे हिमाचल प्रदेश को 9 तारीख से हम बंद करेंगे। या तो पॉलिसी हमारे लिए भी वैसी बनाओ या तो उस एसओ को टर्मिनेट करो, तब हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, हमारे कर्मचारियों को जीपीएफ नहीं मिल रहा। ऐसा ना हो कि हमें एक नोटिस आपको और देना पड़े।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक व उपाधियों से किया अलंकृत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टरों से एम्स की प्रतिष्ठा बनाए रखने और समर्पण भाव से कार्य करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बताया सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पीजी मेडिकल की सीटें बढ़ाने में सहयोग का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राधिकरण के गठन को दी मंजूरी। अनुसंधान कार्यों को मिलेगी मजबूती। और एचआरटीसी चालक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 8 अक्टूबर से चक्का जाम करने का लिया निर्णय। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप
3: श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला श्रोताओं आप सुन रहे हैं और अब गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत। और साथ ही साथ आपसे ये वादा करके हम जा रहे हैं कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: मजबूरी हो गई सर, मेरा मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा, ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ, 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन। थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है।
2: इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
2: इतने पैसे, माय,
3: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
4: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
5: बढ़िया,
4: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
6: कितना टाइम?
4: अरे पूरे 2 घंटे।
6: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
7: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
6: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
4: डॉक्टर।
7: डॉक्टर?
4: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
6: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
6: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
7: वो किसी को भी हो सकता है।
6: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
4: चलो,
6: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या।

0: दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने है क्या?

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला। बच्चों के पोषण को मजबूत करने के लिए कांगड़ा में शुरू हुआ मिशन भरपूर 2.0। शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं। दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि कर खिलाड़ियों का बढ़ाया सम्मान। इंडिगो से हवाई यात्रा करना होगा महंगा। सरकारी CBSE स्कूलों में मेरिट नहीं, शिक्षकों की पसंद नियुक्ति का आधार। पटवारी के 574 पदों की भर्ती की प्रक्रिया इसी माह होगी पूरी। अब 10 अक्टूबर को होगी कैबिनेट मीटिंग। अब समाचार विस्तार से।

जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज वैरवा ने अधिसूचना जारी करते हुए खबली दो सड़का से बणेदा हट्टी तक के सड़क मार्ग पर सीसी पेमेंट के कार्य के कारण पैसा से बणेदा हट्टी तक सड़क को सभी प्रकार के वाहनों के लिए 6 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इस अवधि के दौरान यातायात के लिए पैसा से भट्टा सड़क मार्ग को वैकल्पिक सड़क मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि एम्बुलेंस, अग्निशमन तथा अन्य आपातकालीन वाहनों का निकलना यदि संभव हो तो प्रतिबंध से छूट रहेगी। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर में आयोजित एचपीयू इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप के समापन समारोह में शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उल्लेखनीय है कि केवल सिंह पठानिया सोमवार देर रात करीब 3 बजे जापान से एशियन गेम्स से वापस प्रदेश लौटे और सुबह खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने तथा हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेहतर सुविधाएं एवं प्रोत्साहन उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातक विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य की कामना की। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल देवभूमि है बल्कि वीरभूमि भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंदिरों, लोक परंपराओं और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत ने हिमाचल प्रदेश को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। उनका कहना है कि बिलासपुर के लोगों ने भी राष्ट्र निर्माण और विकास की कीमत के रूप में विस्थापन का दर्द सहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकास की परिकल्पना के अनुरूप निर्मित भाखड़ा बांध केवल विकास और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक ही नहीं है बल्कि ये बिलासपुर के लोगों के त्याग और योगदान को भी दर्शाता है। बच्चों में कुपोषण की रोकथाम तथा उनके समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन कांगड़ा के सहयोग से रक्कड़ धर्मशाला से मिशन भरपूर 2.0 का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और मिशन भरपूर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने कहा कि हमारा विश्वास है कि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला हैं। आज के नौनिहाल ही देश के आने वाली पीढ़ी हैं और यदि उन्हें बचपन से ही उचित पोषण, स्वास्थ्य और बेहतर वातावरण मिले तो वे आगे चलकर समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। बच्चों का पोषण केवल सरकार या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक माता पिता और परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली और एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण कई बार बच्चों को वो समय और व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिल पाता जो उनके समुचित विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे में वैज्ञानिक अनुसंधान और पारंपरिक पोषण पद्धतियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिशन भरपूर इसी दिशा में एक अभिनव पहल है जिसके तहत बच्चों को स्वादिष्ट एवं पोषण युक्त सप्लीमेंट्री उत्पाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 27 साल तक गरीब बच्चों को मिलेगी पॉकेट मनी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब जो है 10 अक्टूबर को शिमला में होगी। इस दिन सेकेंड स्टैंडर्ड की छुट्टी भी है। छुट्टी के दिन सचिवालय में 11 बजे ये बैठक रखी गई है। इससे पहले 11 सितंबर और 5 अक्टूबर को रखी गई बैठकें नहीं हो पाई थी, इसलिए इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ले सकती है। इस बार रोजगार से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार का फोकस रहने वाला है। कॉमन कैडर के तहत जूनियर इंजीनियर की 500 से 600 पदों पर भर्ती का मामला जा सकता है। इससे पहले जेई की भर्ती संबंधित विभाग ही करते थे और विभाग ही सीनियोरिटी मेंटेन करते थे, लेकिन अब ये भर्ती जेओएआईटी की तरह भर्ती निदेशालय के तहत होगी। हिमाचल प्रदेश में पटवारियों के 574 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी माह पूरी कर ली जाएगी। इन पदों के लिए करीब 1,90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
प्रदेश में करीब 19 परीक्षा केंद्रों पर पटवारी भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि भर्ती प्रक्रिया लंबी है, ऐसे में नवंबर माह तक इसे पूरा होने की उम्मीद है तथा इस वर्ष के अंत तक ये पटवारी प्रशिक्षण पर भेज दिए जाएंगे। भर्ती के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मामलों, इंतकाल, जमाबंदी, निशानदेही और अन्य राजस्व कार्यों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। नए प्रावधानों के तहत प्रदेश सरकार जरूरत के अनुसार सरकारी सेवा में कार्यरत शिक्षकों से CBSE से संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी। 27 साल तक इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले युवाओं को 1,000 की न्यूट्रिशन एजुकेशन ग्रांट भी दी जाएगी। इसका लाभ प्रदेश के 23,000 युवाओं को मिलेगा। दरअसल प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का दायरा बढ़ाकर अब 27 साल तक कर दिया गया है। योजना के तहत पात्र बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के साथ पोषण व स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए हर महीने 1,000 रुपए की विशेष सहायता भी दी जाएगी। इससे प्रदेश के करीब 23,000 युवाओं को लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अब तक योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ही आर्थिक सहायता दी जाती थी। सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए सहायता की अवधि बढ़ाकर 27 वर्ष करने का फैसला लिया है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो,
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने है क्या?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो,
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

0: सर्जन? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।